0: हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताए एवं काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हमारे विचार और हमारे कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम नकारात्मक और बुरी सोच के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर यदि हम शुद्ध और सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें खुशियाँ और सफलता का अनुभव होता है। हमारे विचारों की शुद्धता हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं।
1: शुभ प्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं और इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं

मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर रिबा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सन 2024 के मई महीने के आज 28 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज के हमारे पहले प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गहिर अत तथा तकनीकी अभियंता मार्दो जर्दो। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा को।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 10:10 पर प्रसारित होगा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से चंद लम्हों बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट

0: मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहर की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग, लेकर आया हूं प्रेम भक्ति और मधुर संगीत से सजा हुआ भक्ति गीत कार्यक्रम। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, ज्ञान और आनंद के प्रतीक हैं। उनकी बांसुरी की मधुर धुन हर दिल को भक्ति में डुबो देती है। कभी वो नटखट कान्हा बनकर मुस्कुराते हैं तो कभी अर्जुन के सारथी बनकर जीवन का सच्चा ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना भी। और आज के इस पावन कार्यक्रम में हम सुनने जा रहे हैं भक्ति संगीत के सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा की मधुर आवाज में कुछ सुंदर कृष्ण भजन। तो आइए मन को वृंदावन की भक्ति में रंग लीजिए, दिल को कान्हा के प्रेम से भर लीजिए और शुरुआत करते हैं आज का भक्ति गीत कार्यक्रम।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम भक्ति गीत। आज के इस भक्ति गीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अनुप जलोदा के आवाज में छंद कृष्णा भजन। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही मन में प्रेम, शांति और मधुरता का एहसास होने लगता है। उनके बांसुरी की धुन आज भी हर भक्त के दिल को छू जाती है। कभी नटखट माखन चोर, कभी राधा के प्रिय कान्हा, तो कभी अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण का हर रूप जीवन को नई सीख देता है।

बार सूरदास जी हरे कृष्ण धुन गाते गाते एक कुएं में गिर गए। कृष्ण को पुकार लगाई, कृष्ण आ गए और ले चले सूरदास को कुएं से निकालकर बाहर। सूरदास तो समझ गए ये और कोई नहीं है, ये मेरे कन्हैया हैं। पकड़ लिया हाथ। कृष्ण बोले, अब तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हें छुड़ाने आया था बस। सूरदास बोले, नहीं, तुम और कोई नहीं, मेरे कन्हैया हो। कन्हैया बोले, नहीं सूर, मैं तो बस साधारण ग्रामीण हूं, यहां से गुजर रहा था, तुम्हें कुएं में गिरे हुए देखा तो निकाल दिया। सूरदास जी ने कहा, नहीं, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम ही हो मेरे कन्हैया। और कृष्ण ने हाथ छुड़ाया और भाग गए। सूरदास

दोस्तों, इसी के साथ आज के भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। प्यारे श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू हुई होगी, क्योंकि जब सुबह पॉजिटिव हो तो पूरा दिन ऑटोमेटिक एनर्जेटिक।

हो जाता है। मैं हूं आपका अपना आरजे कारग और आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे वो कास्ट प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं योग एक्सरसाइज और हेल्थ टिप्स की, ताकि आप का तन रहे पीठ और मन रहे सुपरहित। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे जरूरी है तो वो है अच्छी सेहत और पॉजिटिव सोच। और इसी लिए हर सुबह हम लेकर आते हैं सिंपल योग आसन, इजी एक्सरसाइज रूटीन और डेली लाइफ की यूजफुल हेल्थ टिप्स जो आप घर बैठे फॉलो कर सकते हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने कंधों को हल्का सा स्ट्रेच कीजिए और तैयार हो जाइए एक हेल्दी और एनर्जेटिक शुरुआत के लिए। दोस्तों, आज सुबह सवेरे के योग सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो आजकल हर उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रही है, यानी मोटापा। ज्यादा वजन सिर्फ देखने का मुद्दा नहीं, बल्कि ये डायबिटीज, हाई बीपी, थकान और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं की जड़ बन सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, रोज 20 से 30 मिनट योग को दे दिया जाए तो फर्क साफ दिखाई देता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मोटापा कम करने के लिए कुछ आसान से योग। सबसे पहला है सूर्य नमस्कार। इसे आप कैसे करें? सूर्य नमस्कार कुल मिलाकर 12 स्टेप्स का ये पूरी श्रृंखला होता है। धीरे धीरे 4 से 5 राउंड से आप शुरुआत कर सकते हैं और नियमित अभ्यास से आप 10 से 12 राउंड तक जा सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने के कुछ फायदे हैं, पूरे शरीर की कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है, पेट और कमर की चर्बी कम करने में मददगार होता है। मोटापा कम करने के लिए अगला योगासन है भुजन आसन। इसे करने के लिए पेट के बल लेटे हाथों के सहारे छाती ऊपर उठाएं। इसे 15 से 20 सेकंड होल्ड करें। इसके करने से पेट की चर्बी कम करने में मददगार होता है और रीढ़ मजबूत होती है और आपके पाचन बेहतर होते हैं। अगला है पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए पीठ के बल लेटे घुटनों को सीने से लगाएं और 20 सेकंड तक इसी स्थिति में होल्ड करें। इसे करने से गैस और पेट की सूजन कम होता है, पेट की चर्बी घटाने में सहायक होता है। अगला योगासन है धनुरासन। इसे करने के लिए पेट के बल लेटे पैरों को पीछे से पकड़े और शरीर को धनुष की तरह उठाएं। इसे करने से पूरे शरीर की चर्बी कम करने में सहायक होता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। और अगला है कपालभाति प्राणायाम। इसे करने के लिए सीधा बैठे तेज गति से सांस बाहर छोड़ें। 1 से 2 मिनट से शुरुआत करें। इसे करने से पेट की चर्बी कम होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर डिटॉक्स होता है। दोस्तों, मोटापा कंट्रोल करने के लिए जरूरी बातें हैं, रोज कम से कम 30 मिनट योग करें, जंक फूड कम करें, मीठा और तला हुआ सीमित करें, 7 से 8 घंटे की नींद लें और दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। याद रखिए दोस्तों, वजन एक दिन में नहीं बढ़ता तो घटेगा भी धीरे धीरे, लेकिन अगर निरंतरता रखी तो बदलाव जरूर दिखेगा। आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटा कदम बड़ा बदलाव। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले योग सेगमेंट में। तब तक फिट रहिए, एक्टिव रहिए और पॉजिटिव रहिए। फिलहाल सुनते हैं
ये बेहद खूबसूरत सा गीत अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी के आवाजों में फिल्म साहिबान से।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। दोस्तों, हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज सुबह सवेरे के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आदत की जो छोटी लगती है लेकिन असर बहुत बड़ा डालती है, वो है बॉडी क्लीनलीनेस यानी शारीरिक स्वच्छता। साफ सफाई सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे सेहत, आत्मविश्वास और बीमारियों से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है रोजाना स्नान यानी डेली वॉट का महत्व। इससे पसीना, धूल और बैक्टीरिया हटते हैं, त्वचा स्वस्थ रहती है, शरीर में ताजगी और ऊर्जा आती है। मौसम के अनुसार गुनगुने या सामान्य पानी से स्नान करें। अगला है हाथों की सफाई। खाने से पहले और बाद में हाथों की सफाई जरूरी है, ये बाहर से आने के बाद या शौचालय के बाद। आप इन सब के बाद अपने हाथों को जरूर साफ करें, क्योंकि हाथों के जरिए सबसे ज्यादा कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। अगला हेल्थ टिप्स है दांतों और मुंह की सफाई। दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें और जीभ की सफाई भी करें। जरूरत हो तो माउथ वॉश का उपयोग करें। इसके फायदे हैं मुंह की बदबू, दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी से बचाव मिलता है। और क्लीनलीनेस का अगला टॉपिक है साफ कपड़े पहनना। रोज धुले कपड़े पहने, अंडरगार्मेंट्स रोज बदलें, क्योंकि गंदे कपड़े त्वचा को संक्रमण का कारण बन सकता है। अगला है बाल और नाखूनों की सफाई। समय समय पर बाल धोए और नाखून छोटे और साफ रखें। इससे गंदगी और बैक्टीरिया जमा नहीं होते हैं। तो दोस्तों, बॉडी क्लीनलीनेस के बड़े फायदे हैं। संक्रमण या बीमारियों से बचाव मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि, दूसरों पर अच्छा प्रभाव और त्वचा और बालों की बेहतर सेहत। दोस्तों, कुछ अतिरिक्त सुझाव हैं। साफ तौलिया और रुमाल का उपयोग करें। बिस्तर की चादर नियमित रूप में बदलें और घर के वातावरण को भी साफ रखें। याद रखिए दोस्तों, स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। जब शरीर साफ होगा तो मन भी हल्का और खुश रहेगा। कल फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले हेल्थ सेगमेंट में। तब तक साफ सुथरा रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगा।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातकालीन श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुबह की प्यारी ठंडी हवाएं, चिड़ियों की मीठी चहचहाहट और रेडियो पर आपकी अपनी पसंदीदा आवाज के साथ मैं हूं आपका अपना आरजे कर्ग और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा खबरें, अपने शहर और राज्य की लोकल डेली न्यूज और ढेर सारी काम की और दिलचस्प जानकारियां, और साथ ही सुनवाएंगे आपको कुछ बेहतरीन गीतों को। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के राष्ट्रीय मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में भीषण गर्मी, कई राज्यों में रेड अलर्ट। उत्तर भारत, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में तापमान 47 से 48 डिग्री तक पहुंच गया है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव को लेकर नेशन वाइड अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर ना निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। असम विधानसभा ने यूसीसी बिल पास किया। असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पास कर दिया है। बिल में पॉलीगेमी पर रोक और लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन जैसे प्रावधान शामिल है। असम ऐसा कानून लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत ने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए प्रक्रिया शुरू की। भारत सरकार ने एडवांस फिफ्थ जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल आमंत्रित किया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति तेज। राहुल गांधी ने राजस्थान में उस नीट अभ्यर्थी के परिवार से मुलाकात की जिसने एग्जाम कैंसिलेशन और पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था को ब्रोकन और खराब सिस्टम बताया। आज बकरी ईद के कारण शेयर बाजार बंद। आज बकरी ईद के अवसर पर एनएससी और बीएसई दोनों बंद है। इस वजह से आज भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजनीतिक हलचल। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर आइडेंटिफिकेशन और इलेक्टोरल वेरिफिकेशन से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया है। इस फैसले के बाद विपक्ष की चुनौती, राजनीति और रणनीतिक बहस पर असर पड़ने की चर्चा है। और आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। अमेरिका ईरान तनाव के बीच सीज फायर टॉक्स जारी। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है, लेकिन सीज फायर और पीस टॉक्स जारी रहने की खबरें सामने आई है, तो स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में एयर स्ट्राइक्स में कई लोगों की मौत और दर्जनों घायल होने की खबर है। मध्य पूर्व में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऑकस और इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर बड़ी बैठक। ऑस्ट्रेलिया के फर्थ शहर में ग्लोबल डिफेंस चीफ की बड़ी बैठक चल रही है। इसमें ऑकस अलायंस, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, एआई वेलफेयर और साइबर डिफेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कनाडा इंडिया ट्रेड डील पर प्रगति। इंडिया और कनाडा के बीच ट्रेड फैक्ट को लेकर बातचीत तेज हो रही है, और रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच समझौता उम्मीद से पहले फाइनल हो सकता है। एप्पल और गूगल ने कनाडा बिल पर चिंता जताई। एप्पल और गूगल ने कनाडा के प्रपोज्ड एनक्रिप्शन बिल को लेकर चिंता जताई है। टेक कंपनियों का कहना है कि इससे

यूजर प्राइवेसी और सिक्योर कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रभावित हो सकती है। इबोला को लेकर कनाडा ने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन बनाए। इबोला ने कनाडा को प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए 21 डे सेल्फ आइसोलेशन रूल लागू किया है। सरकार ने इसे प्रिकॉशनरी सेफ्टी मेजर्स बताया है। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, और कार्यक्रम में रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। खांडू एस्योर स्ट्रॉन्गर आईएलपी सिस्टम एज एपीएसटी बीएससी सेट्स डेडलाइन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मूल निवासी जनजाति अधिकारों, जनसंख्यिकी चिंताओं, इनरलाइन परमिट नियमों और एपीएसटी से जुड़े मामलों पर ठोस और दीर्घकालिक समाधान निकालने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगी। नीति विहार स्थित स्टेट बैंकेट हॉल में आयोजित एक उच्च स्तरीय परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इन चर्चाओं को ऐतिहासिक बताया। इस बैठक में समुदाय आधारित संगठनों यानी सीबीओ, छात्र संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, राजनीतिक नेताओं और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित सभी प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। मीजे ग्रांटेड इंटरिम बेल रिलीज फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी। नशा विरोधी कार्यकर्ता गुमिन मीजे को असम के लखीमपुर जिला और सत्र न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई और बुधवार को उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया। इस बीच पूर्वी सियांग जिले में आदि छात्र संघ, आदिशु और कई अन्य स्थानीय छात्र संगठनों द्वारा बुधवार को आहुत 12 घंटे का बंद मीजे की रिहाई के बाद दोपहर में वापस ले लिया गया। आईसीआर एडमिनिस्ट्रेशन बैंस कमर्शियल स्लॉटर ऑफ मिटुन्स। ईटानगर कैपिटल रीजन के प्रशासन ने बुधवार को मिटुन के व्यवसायिक वध कर प्रतिबंध लगा दिया और चेतावनी दी कि अगर इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। गवर्नर कमांड्स अरुणाचली वुमेन। राज्यपाल केटी फरनायक ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक जीवन में अत्यंत सक्रिय हैं। उन्होंने आगे कहा कि कृषि और उद्यमिता से लेकर शासन और सामाजिक अभियानों तक अरुणाचली महिलाएं समाज में सार्थक योगदान देना जारी रखे हुए हैं। डॉनर मिनिस्ट्री इंस्पेक्ट्स रिवॉच सेंटर फॉर मदर लैंग्वेजेस। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रोजेक्ट्स एसोसिएट छे सनातन सिंघा ने बुधवार को लोअर दिबांग घाटी जिले में स्थित रिवॉच सेंटर फॉर मदर लैंग्वेज का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सिंघा ने आरसीएमएल के चल रहे प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश की मातृभाषाओं के साहित्यिक विकास को बढ़ावा की समीक्षा की। इस प्रोजेक्ट्स को नोडल एजेंसी आदिवासी मामलों के विभाग के माध्यम से पूर्वोत्तर परिषद का सहयोग प्राप्त है। गवर्नर अर्ज यूथ टू बिकेम एम्बेसडर ऑफ नेशनल यूनिटी। गवर्नर केटी फरनायक ने युवाओं से राष्ट्रीय एकता के दूत बनने और ज्यादा मेलजोल, सहानुभूति और आपसी सराहना के जरिए रूढ़िया और क्षेत्रीय बाधाओं को खत्म करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। बुधवार को यहां लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों से बातचीत करते हुए गवर्नर ने उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों से जुड़ने और एकता, आपसी सम्मान और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए सार्थक बातचीत में शामिल होने की सलाह दी। तो दोस्तों, ये था आज का न्यूज सेगमेंट। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, बढ़ते हैं मॉर्निंग इंटरटेनमेंट के कार्यक्रम को आगे और सुनते हैं कार्यक्रम में यह बेहद खूबसूरत गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म खोहिला से।

दोस्तों मॉर्निंग एंटरटेनमेंट कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म खिलाड़ी से।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग एंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता

0: लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना अर्जी कार्ग और शुरू हो चुका है आपका फेवरेट म्यूजिकल सफर सदाबहार। दोस्तों, इस प्यारे से प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की ताजा मौसम अपडेट्स, ताकि आप जान सके कि आज दिन भर मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। धूप खिली रहेगी या बादल देंगे ठंडी से राहत, या बारिश की फुहारे मौसम को और भी खूबसूरत बना देगी। और मौसम की इन प्यारी बातों के साथ साथ हम सजाते हैं आपका दिन कुछ रिलैक्सिंग और एवरग्रीन सॉन्ग के साथ, जो दिल को दे सुकून, यादों को करे ताजा और चेहरे पे ले आए एक प्यारी सी मुस्कान।

तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के ईटानगर के मौसम के हाल। दोस्तों इस वक्त ईटानगर का मौसम थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा है। अभी आसमान में अच्छे खासे बादल छाए हुए हैं और मौसम काफी क्लाउडी फील दे रहा है। हवा हल्की चल रही है और गर्मी फिलहाल ज्यादा महसूस नहीं हो रही। तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अंदाजा है। अब दिन में क्या हो सकता है देखिए दोस्तों, अभी क्लाउडी के मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिन में कभी कभी धूप निकल सकती है, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अगर बादल थोड़े हटे तो दोपहर तक अच्छी धूप निकल सकती है और तापमान करीब 30 से 31 डिग्री तक जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बादल इसी तरह बने रहे तो दोपहर या शाम में हल्की फुहारें भी पड़ सकती है। फिलहाल मौसम पूरी तरह स्टेबल नहीं लग रहा, यानी क्लाउडी टू पार्टली सनी वाला मूड बना हुआ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी का मौसम है बादलों से घिरा हुआ, हल्की हवा वाला और दिन में धूप या हल्की बारिश दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर बाहर निकल रहे हो तो अम्ब्रेला साथ रखना सेफ रहेगा और अगर धूप निकल आए तो सनग्लासेस भी काम आ जाएंगे। तो फिलहाल मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है और ऐसे मौसम में म्यूजिक का मजा तो और भी मजा बढ़ा देता है। तो बने रहिए अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल आवाजों में सरगम फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, अरुण FM 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम सदाबहार, जहां हर गीत दिल को सुकून देता है और हर धुन यादों को फिर से जगा देती है। और अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसे सुनते ही मन खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। जिंदगी भी एक गीत की तरह है दोस्तों, अगर दिल खुश हो तो हर पल सुरों से भर जाता है और यही खूबसूरत एहसास लेकर आता है ये प्यारा नगमा। फिल्म गीत गाता चल का ये बेहद मधुर और एवरग्रीन सॉन्ग जिसे गाया है जसपाल सिंह ने।

दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर सदाबहार का ये खूबसूरत संगीत सफर जारी है और अब बारी है एक ऐसे टाइमलेस रोमांटिक क्लासिक की जिसकी हर लाइन प्यार की नरम सी खुशबू लेकर आती है। कभी किसी की मुस्कान, किसी का चेहरा और उसकी मासूम अदाएं दिल में इतनी गहराई से बस जाती है कि हर नज़ारा उसी से जुड़ा हुआ लगता है।

0: दोस्तों, इसी सदाबहार गीत के साथ आज के सदाबहार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभाग मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा

0: हवादी ने परवल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इससे कांगो के प्रभावित समुदायों

0: तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल रेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा

0: मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज। संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 crore rupees। Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
3: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas, with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in Mission Mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे दोस्त कारगर, और शुरू हो चुका है आपका फेवरेट इंफोटेनमेंट शो हेलो ईटानगर। इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट, यानी आज के दिन इतिहास में क्या खास हुआ था, और साथ ही दिल को सुकून देने वाला कुछ मधुर संगीत जो आपके दिन को बना दे और भी खूबसूरत। तो चाहे आप घर पर हो, ऑफिस जा रहे हो, या पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच सफर कर रहे हो, बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ पल होने वाला है नॉलेज, मेमोरीज और म्यूजिक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो ईटानगर, सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। तो दोस्तों आइए देखते हैं टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट में, तो इतिहास के पन्नों में क्यों खास है 28 मई। सबसे पहले देखते हैं भारत के इतिहास पर एक नजर। वर्ष 1883, वीर सावरकर का जन्म। आज ही के दिन विनायक दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वे महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और समाज सुधारक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 1930 में आज ही के दिन पहली बार 281 फुट ऊंची इमारत क्रिसलर बिल्डिंग चर्चा में आई। भारत समेत पूरी दुनिया में आधुनिक वास्तुकला और तकनीक की चर्चा तेज हुई। उस दौर में भारत की आधुनिक विकास की ओर बढ़ रहा था। आज ही के दिन वर्ष 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ था, और 28 मई को पूरे देश ने उन्हें अंतिम विदाई दी। लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। 2008 में कर्नाटक में नई सरकार का गठन। 28 मई 2008 को कर्नाटक में नई सरकार बनी, जो राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना गया। आइए विश्व इतिहास पर एक नजर डालते हैं। वर्ष 1962 बंदरों की अंतरिक्ष में भेजा गया। अमेरिका ने 28 मई 1959 को दो बंदरों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के शुरुआती प्रयोगों में से एक था। वर्ष 1998 पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण। 28 मई 1958 को पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद दक्षिण एशिया में परमाणु शक्ति संतुलन को लेकर वैश्विक चर्चा तेज हो गई। 1937 वॉक्सवैगन कंपनी की स्थापना। आज ही के दिन वॉक्सवैगन की स्थापना जर्मनी में हुई थी। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक मानी जाती है। वर्ष 1744 पोप अलेक्जेंडर का निधन। धार्मिक और यूरोपीय इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं में भी 28 मई को दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों 28 मई का दिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीति विज्ञान और विश्व इतिहास के कई बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है। इतिहास हमें याद दिलाता है कि हर दिन अपने भीतर कई कहानियों और सीख छुपाए होता है। और अब इसी खूबसूरत सोच के साथ चलिए बढ़ते हैं एक सूटिंग म्यूजिकल ब्रेक की ओर। सुनते हैं उदित नारायण और विवा शर्मा की आवाजों में इश्क फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज यानी 28 मई को कौन कौन सी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। ये दिन खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य और मानव कल्याण से जुड़ी जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ यानी महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 28 मई को इस दिन का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दिन का शुरुआत कब हुई थी? इस अभियान की शुरुआत वर्ष 1927 में हुई थी। दुनिया भर की कई स्वास्थ्य और महिला अधिकार संस्थाएं इस दिन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती हैं। मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को जागरूक करना, समाज को संदेश देना कि महिलाओं का स्वास्थ्य पूरे परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ देशों में 28 मई को वर्ल्ड हैमबर्गर बर्गर डे भी मनाया जाता है, जो लोकप्रिय फास्ट फूड कल्चर से जुड़ा एक फन फूड डे माना जाता है। तो दोस्तों, 28 मई हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ महिला की एक स्वस्थ परिवार और मजबूत समाज की नींव होती है। आइए, महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और खुशहाली के लिए हमेशा जागरूक रहे। तो अब इस खूबसूरत संदेश के साथ चलिए बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत को सुनने के लिए। तो चलिए सुनते हैं अनु मलिक और हेमा सरदाई साई की आवाजों में फिल्म जानम समझा करो सी।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचे को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
3: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।

0: पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम सऊदी अरब के जेल से रिहा होने के बाद आखिरकार केरल में अपने घर लौट रहे हैं। रहीम सऊदी अरब की जेल में लगभग 2 दशक तक कैद थे। कोझिकोड जिले के रामनट्टुपुरा में के मूल निवासी रहीम आज सुबह सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हुए। रहीम को एक 15 वर्षीय विकलांग लड़के की मौत के संबंध में दोषी ठहराया गया था। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरी ईद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 196 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, include waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system or PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometer of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. Prime Minister Narendra Modi today remembered Veer Savarkar on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said, "The courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people." The Prime Minister said, "Veer Savarkar's intellect and emphasis on social reform are also

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। इस कार्यक्रम में हम आपको बॉलीवुड के ताजा तरीन कवरेज, ट्रेंडिंग अपडेट्स और मूवी रिव्यूज और क्या खास है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, इन सब के जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलते हैं और साथ ही सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत गीतों को। दोस्तों रणवीर सिंह का आध्यात्मिक वीडियो वायरल, डॉन ट्री विवाद के बीच रणवीर सदगुरु की शरण में पहुंचे। उन्होंने जिंदगी का असली मकसद

पूछा, वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। शमिता शेट्टी का खरारा जवाब, कुंवारे होने पर मजाक उड़ाने वालों को शमिता ने कहा, शादी करके क्या उगार लिया, उनका ये रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है। शक्ति कपूर आग बबूला, अपनी मौत की झूठी खबर देखकर शक्ति कपूर ने वीडियो जारी कर ट्रोलर्स को फटकार लगाई।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। सलमान खान का सेवन डॉग्स कैमियो इंटरनेट पर वायरल। भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों फिर से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वजह है उनकी इंटरनेशनल एक्शन फिल्म सेवन डॉग्स में छोटी लेकिन दमदार अपियरेंस को लेकर। इजिप्ट प्रीमियर के बाद उनका एक बार्बर शॉप वाला सीन इतना वायरल हुआ कि पेंस रील्स और मीम्स बनाने लगे। तो स्क्रीन पर सलमान सिर्फ 5 मिनट भी आए तो ऑडियंस पॉपकॉर्न खाना भूल जाती है। मौनी रॉय का इमोशनल कन्फेशन। 9 साल स्ट्रगल किया, टीवी से बॉलीवुड तक का सफर आसान नहीं था, ये खुलकर बताया मौनी रॉय ने कांस इवेंट में। उन्होंने कहा कि उन्हें बार बार टीवी एक्ट्रेस टैग देकर टाइपकास्ट किया गया, लेकिन आज भी वो हंग्री फॉर मीनिंगफुल वर्क है। फैंस अब उनकी ऑनेस्टी की खूब तारीफ कर रहा है। सक्सेस सिर्फ ग्लैमर नहीं होता दोस्तों, उसके पीछे सालों की मेहनत और रिजेक्शन भी होता है। बॉलीवुड अवार्ड शोज पर दिव्यांदु का बड़ा हमला। दिव्यांदु ने अवार्ड फंक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा अवार्ड शोज पैक और मनी मेकिंग मशीन्स बन चुके हैं। उनका दावा है कि एक अवार्ड किसी और को सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि वो इवेंट अटेंड नहीं कर पाए थे। अब सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू, क्या बॉलीवुड अवार्ड स्क्रिप्टेड होते हैं? क्या टैलेंट से ज्यादा पीआर चलता है? अरे भाई, अब तो अवार्ड शो पर भी पब्लिक का ट्रस्ट टेस्ट होने लगा है। फिलहाल सुनते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक की ओर। सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। कंगना रनौत के मंगलसूत्र लुक ने मचाई शादी की अफवाह। कंगना रनौत को हाल ही में मंगलसूत्र और हरी चूड़ियों में देखा गया। बस फिर क्या था?

सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे सीक्रेट साड़ी हो गई क्या। कुछ लोग इसे उनकी अपकमिंग फिल्म लुक बता रहे हैं तो कुछ इसे पर्सनल हिंट मान रहे हैं। तो बॉलीवुड में एक मंगलसूत्र क्या दिख गया, इंटरनेट ने तो शादी का इनविटेशन भी प्रिंट कर दिया। सोनम कपूर यूके में कंट्रोवर्सी में फंसे। सोनम कपूर और उनके हस्बैंड को यूके में ऑनलाइन बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लंदन में कई फ्लैट्स खरीदे हैं जिन्हें एलिगली स्टाफ क्वार्टर्स में बदलने की योजना है। इसके बाद सोशल मीडिया पर वेल्थ इनइक्वालिटी को लेकर बहस छिड़ गई। लग्जरी लाइफस्टाइल कब कंट्रोवर्सी बन जाए बॉलीवुड स्टार्स को भी पता नहीं चलता। रणवीर सिंह मंदिर पहुंचे कंट्रोवर्सी के बाद। रणवीर सिंह हाल ही में कर्नाटका के चामुंडेश्वरी टेम्पल पहुंचे। कुछ दिनों पहले उन पर कंटारा स्टाइल मिमिक्री को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ था। अब फैंस इसे उनकी साइलेंट एपोलॉजी गेस्चर मान रहे हैं। इसी बीच डॉन ट्री को लेकर भी बज बना हुआ है। रणबीर का स्टाइल जितना लाउड होता है उतनी ही इमोशनल उनका डैमेज कंट्रोल भी। बढ़ते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद
1: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। कांस 2026 की ग्लैमर क्वीन बनी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन का कांस क्लोजिंग सेरेमनी लुक इंटरनेट पर छाया हुआ है। उनका वाइट टॉक्सिडो लुक और फीडर स्टाइलिंग फैंस को ओल्ड स्कूल रॉयल बॉलीवुड ग्लैमर की याद दिला रहा है। तो कांस हो या रेड कार्पेट, ऐश्वर्या राय का ऑरा अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर रॉयल फील देता है। टीवी वर्ल्ड ट्रेंडिंग की अगर हम बात करें तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी फिर चर्चा में। लेजेंडरी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के नए ट्विस्ट ऑडियंस को फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं। करंट बज है आर्यन परी मैरिज ट्विस्ट, फैमिली ड्रामा तुलसी वर्सेस रयान्स टेंशन। तो सोशल मीडिया पर नॉस्टैल्जिया वेव चल रही है। एकता कपूर का ड्रामा मतलब घर घर की छाए और टीवी दोनों एक साथ गरम। ए आर रहमान और हंस जिमर कोलैबोरेशन की चर्चा। ए आर रहमान और हॉलीवुड लेजेंड हंस जिमर के कोलैबोरेशन को लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। रूमर है कि अपकमिंग रामायण सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए इफिक साउंडट्रैक तैयार कर रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, रहमान की और हंस जिमर की स्केल गूसबम्प्स गारंटीड है। दोस्तों, फिल्मी गपशप में फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक की ओर बढ़ते हैं। सुनते हैं अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाजों में अजनबी फिल्म का ये गीत।

दोस्तों आज इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स और स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट पर कुछ गाने लिटरली इंटरनेट पर राज कर रहे हैं। कहीं रोमांटिक स्लो मोशन रील्स, कहीं वेडिंग एडिट्स, कहीं जिम वाइब्स और कहीं ब्रेकअप एस्थेटिक ट्रेंड में है। तो चलिए सुनते हैं कौन से बॉलीवुड सॉन्ग और रील्स अभी सबसे ज्यादा वायरल चल रहे हैं। सबसे पहला है तौबा तौबा, स्टिल अ रील्स मॉन्स्टर। फिल्म का गाना पुराना हो सकता है लेकिन विकी कौशल का स्वैग अभी भी इंस्टाग्राम पर फुल ट्रेंड में है। और इंटरेस्टिंग बात, इंटरनेशनल सिंगर निक जोनस ने भी रिसेंटली बोला कि ये उनका फेवरेट बॉलीवुड वेडिंग डांस ट्रैक है। एक गाना जब शादी से लेकर जिम रील तक चलने लगे, समझ जाओ वो सिर्फ सॉन्ग नहीं इंटरनेट पेवर बन गया है। अगला है गिस गिस गिस फुल देसी वायरल मैडनेस। अक्षय कुमार और भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह का लेटेस्ट ट्रैक गिस गिस गिस अभी रील्स वर्ल्ड का नया देसी डांस एंथम बना हुआ है। तो भोजपुरी प्लस बॉलीवुड फ्यूजन, फनी एक्सप्रेशन, वेडिंग डांस एडिट और मीम टेम्पलेट्स, फैंस स्पेशली इस गाने के क्विर्की लिरिक्स और एनर्जेटिक कोरियोग्राफी को काफी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये गाना क्लासिक नहीं मैसी है और रील्स ऑडियंस को वही तो चाहिए, पुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट। अगला है पहला नशा रोमांटिक रील्स का किंग कमबैक, ऑल इज गोल्ड। दोस्तों 1990 का आइकॉनिक रोमांटिक सॉन्ग पहला नशा फिर से इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। स्पेशली प्री वेडिंग शूट, प्रपोजल वीडियो, स्लो सिनेमैटिक ट्रांजिशन और ड्रीमी एस्थेटिक एडिट, यंग क्रिएटर्स भी अब रेट्रो रोमांस वाइब को बहुत यूज कर रहे हैं। तो 90s का प्यार 2026 के फिल्टर्स के साथ उफ, दिल को डायरेक्ट सॉफ्ट कॉर्नर में हिट करता है। और योयो हनी सिंह का लाल परी, पार्टी रील्स एवरीवेयर। तो पार्टी रील्स की जान बना हुआ है लाल परी, क्लब एडिट्स, कार क्रॉसिंग वीडियोस, नाइट क्लब एस्थेटिक डांस ट्रांजिशन। ये गाना करंटली इंडिया के टॉप वायरल ट्रैक्स में काउंट हो रहा है। तो दोस्तों ये था लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स और रील्स जो फिलहाल इंटरनेट पर छाया हुआ है। फिलहाल फिल्मी गपशप में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में फिल्म और प्यार हो गया से ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। तो दोस्तों, इस आने वाले वीकेंड फॉर एंटरटेनमेंट दुनिया में होने वाला है पूरा धमाका। कहीं कोर्टरूम ड्रामा, कहीं हॉरर कॉमेडी वाइब्स, कहीं रोमांस और कहीं सुपर हीरो ट्रेलर्स और कहीं फैमिली बिंज वॉच कंटेंट। अगर आप सोच रहे हैं वीकेंड पर क्या देखना है तो टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड प्लस ओटीटी रिलीज का बिल्कुल आपके अंदाज में। सबसे पहला है बिग स्क्रीन रिलीजेस की, यानी थिएटर रिलीज की बात करें तो पहला है जीना दिल से। यह एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है। इस वीकेंड की सबसे इमोशनल बॉलीवुड रिलीज मानी जा रही है जीना दिल से। फिल्म की कहानी प्यार, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और सेकेंड चांसेस पर बेस्ड बताई जा रही है। तो अगर आपको ओल्ड स्कूल बॉलीवुड रोमांस पसंद है तो ये फिल्म आपके दिल का प्लेलिस्ट बन सकती है। अगला है ऑब्सेस, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। अब बात उस फिल्म की जो सोशल मीडिया पर मिस्ट्री बज क्रिएट कर रही है, ऑब्सेस। फिल्म रिपोर्टेडली एक ऑब्सेसिव पेन और सेलिब्रिटी लाइफ के डार्क साइड को एक्सप्लोर करती है। ट्रेलर में इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक और क्रीपी विजुअल्स ने ऑडियंस को क्यूरियस बना दिया है। यह सिर्फ ट्रेलर नहीं, माइंड गेम है दोस्तों। अगला है द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, फैमिली एंटरटेनर और फैंटेसी एडवेंचर। अगर फैमिली आउटिंग प्लान कर रहे हो तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। इसमें कॉमेडी, फैंटेसी, एक्शन और किड्स फ्रेंडली सुपर हीरो वाइब्स हैं। तो फिल्म में इंडियन माइथोलॉजी इंस्पायर्ड सुपर हीरो कंसेप्ट देखने को मिलेगा। अगला है द रिटर्न ऑफ द जंगल, एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है। जंगल एडवेंचर प्लस कॉमेडी प्लस सर्वाइवल चाउस। ये फिल्म खासकर यंगर ऑडियंस और फैमिली क्राउड के बीच हाइप बना रही है। रूमर्स है कि इसमें कोई सरप्राइज सेलिब्रिटी कैमियोज भी हो सकती है। तो वीकेंड पिकनिक का मूड तो जंगल एडवेंचर रेडी है दोस्तों। और देखते हैं ओटीटी रिलीज के बारे में इस वीकेंड पर। पहला है जोली एलएलबी 3, ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है। हाँ दोस्तों, इस वीकेंड की सबसे बड़ी ओटीटी हेडलाइन है जोली एलएलबी 3। कोर्टरूम सटायर, फनी पंचेस और सोशल कमेंट्री का मिक्स फिर वापस आ गया है। फैंस खासकर इसके वीटी डायलॉग्स और लीगल चाउस के लिए एक्साइटेड है। इसे आप नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे। अगला है स्पाइडर नोयर, एक डार्क सुपर हीरो क्राइम सीरीज है सुपर हीरो फैंस के लिए। ये वीकेंड जैकपॉट जैसा है। अगला है द कजिन्स एंड कल्याणम्स, ये भी एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा है। साउथ इंडियन फैमिली एंटरटेनर जो अब फैन इंडिया ओटीटी ऑडियंस में ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, आज की फिल्मी गपशप में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म से ये बेहद खूबसूरत गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्मी गपशप कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्र ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की।

0: सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हम राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
4: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्यूनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
3: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
2: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometer of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling. The festival of sacrifice Eid ul-Azha or Bakrid is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. The faithfuls are offering Eid prayers in Eidgahs and grand mosques. In national capital Delhi, main Eid prayers congregations are being held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion. In a message, the president said that the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. Prime Minister Narendra Modi has greeted people on the occasion of Eid ul-Azha.

0: Adha. In a social media post, Mr. Modi hoped that the occasion will deepen the spirit of brotherhood and happiness in the society. He also prayed for everyone's success and good health. Prime Minister Narendra Modi today remembered Veer Savarkar on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said, "The courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people." The Prime Minister said, "Veer Savarkar's intellect and emphasis on social reform are also noteworthy." In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Tomorrow, Rajasthan Royals will take on Gujarat Titans in qualifier 2 for a place in the final. The final match will be played on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Earlier, Royal Challengers Bengaluru stormed into the final, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier 1 match at Dharamshala on Tuesday. In Norway chess, R. Pragyananda defeated the Norwegian world number one Magnus Carlsen, gripping the contest to claim 3 full points in round 3 of the tournament yesterday. In contrast, world champion D. Gukesh continued to endure a difficult run, suffering another setback after losing to Alireza Firuza in the final game. And that is the end of this news bulletin.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड के साथ। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का फेवरेट म्यूजिकल प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों ये एक ऐसा शो है जहां आपके टेक्स्ट मैसेजेस लेकर आते हैं, आपकी यादें, आपकी मोशन और फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग्स को आप बस भेजिए हमें अपना फरमाइश एसएमएस के जरिए। हमारा नंबर है 9436887808। बस लिख भेजिए अपना नाम, आप कहां से सुन रहे हैं, गाने का नाम, फिल्म या सिंगर का नाम, और अगर किसी कास्ट को डेडिकेशन देना चाहते हैं तो वो भी, और फिर हम बजाएंगे आपके पसंद का सुपरहिट गीत सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो दोस्तों रेडियो जाइए म्यूजिक, मस्ती और इमोशन के इस खूबसूरत सफर के लिए। और दोस्तों अब वक्त हो चुका है आज के पहले मैसेज का। ये प्यारा सा मैसेज भेजा है टेंशन क्रो, अतुल क्रो और सरलो क्रो ने लंकांगसाम डिस्ट्रिक्ट कार्बेहलोंग से। आप सभी कोरोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही एवरग्रीन और रोमांटिक मेलोडी, मेरे जीवन साथी फिल्म का ये टाइटल ट्रैक। दोस्तों ये गाना पुराने बॉलीवुड के उन क्लासिक में से है जो आज भी दिल को एक अलग ही सुकून देता है।

स्वामी ने बोकाघाट असम से हर्षित जी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपको दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक सुपर हिट फन फिल्म और पार्टी मूड वाला गाना बदतमीज दिल, फिल्म ये जवानी है दीवानी से। दोस्तों ये गाना बजते ही मूड ऑटोमेटिकली डांस मोड पर चला जाता है। तो हर्षित जी आपकी इस मस्त रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1।

धन्यवाद। आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। यह मैसेज हम भेजा है लोकीनाथ रोंगांग ने नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश से। लोकीनाथ जी अरुण FM 103.1 MHz पर आपको दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही रोमांटिक और एवरग्रीन ब्लॉकबस्टर मेलोडी दिल तो पागल है फिल्म का ये टाइटल ट्रैक। दोस्तों ये गाना प्यार इमोशन और रोमांस का एक खूबसूरत एहसास है और आज भी लिसनर्स के दिल में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। तो लोकीनाथ जी आपकी इस ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

और दोस्तों अब वक्त हो गया है एक और खूबसूरत रिक्वेस्ट का। ये मैसेज भेजा है गीता पेहू ने असम से। गीता जी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका प्यार भरा नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही रोमांटिक और सूटिंग मॉडर्न मेलोडी प्यार आता है, रितु रिवा और श्रेया घोषाल की आवाज में है। दोस्तों ये गाना अपनी सॉफ्ट मेलोडी और हार्टफेल्ट लिरिक्स के लिए यंग लिसनर्स के बीच काफी पॉपुलर है। तो गीता पेगू जी आपकी इस लवली रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों अब एंजॉय कीजिए ये सोलफुल रोमांटिक ट्रैक को।

0: दोस्तों, हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद रेडियो ऑन डिमांड के अगले मैसेज के साथ। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: और दोस्तों, अब बारी है एक प्यारी और क्लासिक मैसेज की। ये मैसेज भेजा है जोगेंद्र रोंगफी, धोरमकिरी रोंगफी और सोनाली इंटिफी ने, ग्राम सलेहाजान, जिला कर्बे अंगलोंग से। आप सभी को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही एवरग्रीन और मधुर क्लासिक मेलोडी, आन मिलो सजना फिल्म का तेरे कारण मेरे कारण गीत को सुनने का। और आप लोगों ने इस गीत को डेडिकेट किया है अमल बसुमतारी, बाइकोन मुंडा, रमेश पात्रो, रुनु पात्रो और मेरे लिए भी और सभी अरुणाचल के श्रोताओं के लिए भी। तो जोगेंद्र, धोरमकिरी और सोनाली जी, आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर और ये मैसेज हमें भेजा है जापो पोयहम ने, विलेज सेनुआ, डिस्ट्रिक्ट लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश से। जापो जी, अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपको दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है, एक बहुत ही रोमांटिक और स्टाइलिश मेलोडी चुरा लिया है तुमने फिल्म का ये टाइटल ट्रैक शान और अलका याग्निक की आवाजों में। तो जापू पोयहम जी, आपकी इस लवली रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

दोस्तों रेडियो डिमांड कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर और ये मैसेज हमें आया है हमारे रेगुलर लिसनर्स अमल बसुमतारी की तरफ से। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है दिल परदेसी हो गया फिल्म से मेरा सोना साजन गीत को, और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है आपके दोस्तों के लिए बिमल, बाइकॉन, रमेश, जोगेंद्र, दुर्गेश, हितेंद्र, इन सभी के लिए। तो अमल बसुमतारी जी, आप और आपके दोस्तों के लिए लीजिए सुनवाते हैं आपके फरमाइश पर दिल परदेसी हो गया फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, अगला मैसेज हमें आया है निशामणि असम से, और निशामणि जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है अरिजीत सिंह की आवाज में, सनम तेरी कसम फिल्म का ये गीत को। तो निशामणि जी, आपकी फरमाइश पर लीजिए, सुनवाते हैं सनम तेरी कसम फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों आइए लेते हैं आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का अगला और अंतिम मैसेज को। और ये मैसेज हमें भेजा है हमारे रेगुलर लिसनर्स कर्ब कर्ब अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट दोलोमारा असम से गेरोन तेरोन जी ने। गेरोन जी ने हमें आज सॉन्ग फरमाइश की है दिल वाली फिल्म का सातों जन्म में तेरे गीत को सुनने का। तो गेरोन जी आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का अंतिम गीत को।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं और इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर तथा तकनीकी अभियंता मार्दो जिर्दो। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आरजे दांपक जी। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी कारगर रिवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्र सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 30रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कल देर रात आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजु

श्रद्धा भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्के जी, मुझे आगे के कारोबार और आप सभी के साथ जुड़ने का मौका प्रदान किया आपने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी स्थिति की कड़ी में 11:10 हो रहे हैं। इसी के साथ अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। इससे पहली प्रसारण सभा में आप जुड़े हुए थे आरजे कारगे जी के साथ और अब आप जुड़े हुए हैं आरजे दांपा यानी मेरे साथ। हमारे इस दूसरी प्रसारण सभा में साथ दे रहे हैं प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता एच एम भूषण। तब चलिए श्रोता, दूसरी प्रसारण सभा की आरंभ करते हुए पेश है कार्यक्रम फिल्मी लहर।

आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देर किस बात की, पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बागी से। गीत के बोल है सब तेरा और इस गीत को आवाज दी है श्वेता कपूर और अरमान मालिक ने।

0: Dostul, am sunt e ghid și a goșal că avanș mai film este cea de se acobătată că a bănihui e mai sat carcăm filmele hermi ham lojing este break că bără.
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मानसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
3: ताकते रहते तुझको।
0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में और इस वक्त आपके लिए पेश है गीत दबंग फिल्म से और इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान ने।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज या आकाशवाणी का अरुण एफएम है और अब आपके लिए पेश है दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

0: losing to Ali Raza Firozia. And with that, we end this news bulletin.
1: शुदा भी आप सुन रहे थे दिल्ली के हिंदी से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का एफएम है जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप जुड़ेंगे मेरे साथ कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और आज के सेगमेंट पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एल्बम तेरे बिना की कुछ खास गीत। जी हाँ दोस्तों, एल्बम तेरे बिना अभिजीत भट्टाचार्य के एल्बम है जो 2003 में रिलीज हुई थी और उसके काफी गाने अर्ली 2000 में बहुत पॉपुलर हुए थे, स्पेशली म्यूजिक चैनल्स और FM रेडियो पर। इस एल्बम के कुछ सबसे हिट गाने आपके लिए आज इस सेगमेंट में पेश है। तो सबसे पहला पेश है कभी यादों में आओ, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में एल्बम तेरे बिना से, और कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के अंत में अब पेश है गीत श्रेया घोषाल और एपिजिलम की आवाज में थोड़ी सितारों।

दोस्तों कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग के बाद अब आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम गीत माला में। जी हाँ, ये सेगमेंट है हमारे पौजे भाइयों और बहनों के लिए। तो पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म मातृभूमि की टाइटल ट्रैक, और इस टाइटल ट्रैक को आवाज दी है अजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म कोई आपसा से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम गीत माला में और हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद और सुनवाएंगे आपको बेहतरीन फिल्म गाने।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मानसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न दे। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है कार्यक्रम गीत माला में और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश है गीत फना फन से। गीत के बोल है देश रंगीला और इस गीत को आवाज दी है महालक्ष्मी अय्यर ने।

दो सवाल बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम गीत माला में, और इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत बचपन सरजीत सिंह की आवाज में। यह गीत दोस्तों भारत के सभी फौजी भाइयों और बहनों को सलाम, उनकी हिम्मत त्याग और देश सेवा के लिए दिल से सम्मान है। और इसी के साथ ही हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये गीत, और इस गीत के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे गीत जो जीता वही सिकंदर फिल्म से।

बस आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत माला यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एफएम अंग्रेजी में समाचार। समाचार के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आकाशवाणी के अरुण एफएम पर और अब आपके लिए प्रस्तुत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश
2: जी।
1: नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर में आपका स्वागत है।
2: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपार डिस्ट्रिक्ट एक्काचार आसाम से। जीवन हो तो कारो जन्य थेमे थके ना किन्तु माझे माझे मन टा थेमे जाए हय तो प्रिय कारो जन्य नय तो प्रिय कोनो मुहूर्तेर जन्य।
1: खूब भालो खूब भालो।
2: दुनिया के सबसे खूबसूरत जोड़ी कौन सी है? मुस्कुराहट और आक्सम। वो दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है लेकिन जब वो दोनों
1: मिल जाता है
2: ऊपर सबसे खूबसूरत होता है सबसे प्यारा होता है
1: वो पल सबसे खूबसूरत और प्यारा होता है। जी बिल्कुल सही बात कही आप। यही है जिंदगी की सच्चाई। क्यों देवजीत दा है कि नहीं?
2: तो आपने कैमन आछेन?
1: हैं दादा आमी खूब भालो। আপনি কেমন?
2: আমিও খুব ভালো আছি।
1: আচ্ছা খুব ভালো থাকেন আপনি। তো বলেন আজকে কোন ছবির গান শুনবেন আপনি?
2: আজকে আমি ছবির নাম হল ফুল আর গানের লাইনটা হলো ক্যা কাহো তুঝসে মে কিতনা প্যার করতে হো সবসে না গানা সবসে আমি তো এত বার করতে হো
1: এত বার করতা হুঁ। হ্যাঁ শোনাবো আপ আপনাকে
2: কুমার শানু আর অলকা ইয়াগনিক।
1: जी जी जी हाँ जी
2: घंटा गए थे।
1: ओके ओके हैं हैं।
2: तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है जी ईटानगर में आज फोन किया।
1: जी आपने काफी दिनों के बाद हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: दो हफ्ते के बाद आज आपके साथ बात
1: हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। नए श्रोताओं को मौका मिलता है जब आप लोग कॉल नहीं करते हैं। तो और किन लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे देवजीत दा?
2: ये गाना मेरा परिवार ने सुनेगा। मेरा पिताजी है जीतन कुमार दास और माता जी है शिल्पणी दास। बड़े भैया है जोजीत दास और आपके लिए सर गाना भी। और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को सर डेडिकेट करूंगा। पहले मेरा आसाम से है, आसाम से बड़े भैया है अनु कुमार भट्टाचार्य और है दीदी है छोटा भट्टाचार्य जी और है हाइलाकंदी से मैं हाइलाकंदी चंडीपुर से है मेरा बहन है लवली दास और बबली दास और पपन दादा है प्रेमजी दादा है और दादा है जवाहरलाल बर्मन और रामतुबाई। और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते सारे श्रोताओं की गाना डेडिकेट करूंगा।
1: जी जो लोग हेलो फरमाइश सुन रहे हैं उन सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं? जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आपके पसंद का गाना फूल फिल्म से। धन्यवाद।
2: नमस्कार। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: हेलो फरमाइश, हेलो नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है। जी सुतापा जी, कैसे हो आप? मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। जी देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को आप सुनाना चाहते हैं इस गीत को?
1: पहले आपके लिए
0: धन्यवाद। जी इन सभी को आप सुनाना चाहते हैं, देवोजी दास दा को भी आप सुनाना चाहते हैं। जी तो सुतापा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी जी हाँ जी हाँ जी, तो हम आपको साजन फिल्म का गीत हम आपको और आपके सभी

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मेरे दोस्त,
0: जी
1: कैसे हो आप?
0: जी मैं बहुत ही अच्छा हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: अरे बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो। आखिरकार मेरा फोन आपने उठा ही लिया,
0: जी जी
1: तो
0: आप कॉल करेंगे
1: तो
0: और हम ना
1: दिल
0: उठाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
1: गार्डन गार्डन हो रहा है।
0: जी जी जी जी हमारा भी दिल बहुत ही खुश हो रहा है।
1: जी जी
0: जी
1: और मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट के श्री भूमि, आसाम से तालुका थे।
0: आसाम से हमारे दोस्त अनूप दा।
1: जी और मेरे दोस्त, आपके वहाँ के जो वातावरण जो है, क्लाइमेटिक जो ये सिचुएशन कैसे है?
0: जी अनुपदा हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है जी, बहुत ही प्यारा मौसम
1: जैसे
0: है।
1: आप जैसे हमारे यहाँ पे तो हो रहा है बारिश।
0: अच्छा आपके वहाँ पे भी हो रहा है ना?
1: तो अभी बारिश थोड़ा थम सा गया, लेकिन
0: अच्छा
1: बारिश का संभावना है अभी।
0: ओके जी, हमारे यहाँ तो लगातार हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है।
1: जी जी जी जी और एक बात कहूँ मेरे दोस्त,
0: जी जरूर।
1: सांस और विश्वास दोनों अलग अलग नाम है ना, पर काम एक ही करता है। सांस जाए तो शरीर खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म, है
0: विश्वास
1: ना?
0: जाए तो रिश्ता खत्म। जी बहुत ही अच्छी बात कही अनुपदा आपने।
1: जी
0: जी जी यही है
1: और
0: जीवन
1: आज
0: की सच्चाई।
1: इसी प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
0: जी जरूर जरूर।
1: फिल्म का नाम है यादों की कसम, और गाने का बोले से, तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बनाया, इतनी हसीनी मिट्टी जाने कहाँ से लाया, ऐसे करके गाने।
0: वाह वाह वाह वाह। जी जी बहुत ही बढ़िया
1: बहुत
0: गीत।
1: सुंदर गाने हैं
0: हाँ
1: मेरे
0: जी
1: दोस्त।
0: जी जी जी
1: हमारे बहुत अच्छे कलाकार है सुरेश वादेकर जी,
0: जी जी जी
1: बहुत अच्छी से गाए हैं,
0: ओके
1: और उन्हीं के गाने

0: है वो
1: जी
0: और कुछ दोस्तों को मैं याद करता
1: जी जी जरूर जरूर हाँ।
0: पहले है हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त है बसंतीलाल सूर्यवंशी जी है, श्रीकांत जोशी जी है और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी है, अमर सिंह साहू जी है, बापन आचार्य जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, सिंधु दास जी है और ओम प्रकाश नेमा जी है, श्रीकांत जोशी और विजय सिंह लखेरा जी और ढेर सारे श्रोताओं भी सुन रहे हैं ईटानगर के इस मन भावन प्रोग्राम सबके लिए और मेरे दोस्त बके बागरा और हमारे बहुत अच्छे सिस्टर है जिसका नाम है
1: नूरी नूरी जी
0: नूरी नूरी मैम
1: जी
0: नूरी
1: जी
0: मैम के लिए
1: ओके
0: तो चलिए बातचीत को यही पे विराम देता हूँ।
1: जी जी जी
0: बहरहाल आप अच्छे रहिए, श्रोता भाई बहन अच्छे रहे, थैंक यू।
1: ओके अनुपदा कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आदरणीय भागरा साहब सादर नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से, और बहुत बहुत स्वागत है।
1: जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आकाशवाणी ईटानगर से वार्तालाप कर रहा हूँ आदरणीय भागरा साहब से। मानवर आप कैसे हैं?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, यहाँ का मौसम भी बहुत ही सुहाना है। आप कहिए आप कैसे और आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ सर, घर के अंदर रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहता हूँ। आप लोगों से वार्तालाप करने का जब भी अवसर प्राप्त हो रहा है मैं इसे खोना नहीं चाहता, और आपसे वार्तालाप करके बेहद खुशी प्रसन्नता की अनुभूत करता हूँ। और मानवर बताना चाहता हूँ
0: जी
1: कि हमारे मथुरा वृंदावन में इस वक्त लू की चपेट में पूरा ब्रज मंडल है, यानी कि लू का प्रभाव ज्यादा है। गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, चिलचिलाई हुई धूप रहती है, और ऐसे में हम केवल और केवल रेडियो के साथ में जुड़े रहते हैं घर के अंदर रहते हुए।
0: ओके जी, बहुत ही अच्छी बात है, घर के अंदर रहिए। और शारदा प्रसाद जी, आप रेडियो में कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं? सिर्फ गाने के प्रोग्राम या फिर कोई अन्य प्रोग्राम भी आप सुनते हैं?
1: जी मैं क्या है कि हेलो फरमाइश सबसे ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ, फिल्म संगीत पसंद करता हूँ, और जो लोकगीत आते हैं विभिन्न राज्यों के, राजस्थानी लोकगीत है, अवधी लोकगीत है, और साथ में जो छत्तीसगढ़ी लोकगीत है इन्हें भी मैं सुनना पसंद करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा और हमारा अरुणाचल प्रदेश का कभी आपने सुना?
1: जी अरुणाचल प्रदेश का जो गाने हैं ना वो लोकगीत हमें बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा भिन्न है।
0: जी जी जी
1: और
0: ये बात तो सही
1: तारीफ है,
0: है
1: कि क्या कहें, आपको तो असमिया भी आती है, बंगाली भी आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, और अरुणाचल प्रदेश की जो स्थानीय भाषा है वो भी आपको अच्छी तरह, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी है आप, वह आप क्या
0: बहुत
1: कहने।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे अरुणाचल प्रदेश में 26 प्रमुख जाति है और 100 से भी अधिक जनजातियां हैं, और इन सब की भाषा बोली बिल्कुल भिन्न है एक दूसरे से।
1: जी
0: जी इतनी भिन्नताओं के बावजूद भी यहाँ के लोग हमेशा से एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरह से भाईचारे के साथ रहा करते हैं।
1: जी जी यही तो हमारे भारतवर्ष की विशेषता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: एकता है
0: जी।
1: अनेक वेशभूषा भोजन सब विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में सब एक जैसे रहते हैं, सबकी भावनाएं एक हैं, सबकी कल्पनाएं एक हैं, और सबके विचार एक रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी जी तो कभी इस अगर मौका लगे तो जरूर सुनिएगा हमारे अरुणाचल प्रदेश का लोकगीत।

0: आधुनिक गीत भी काफी सारे हैं यहाँ के।
1: जी जी
0: जी ओके, तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: आज है अपने परम आदरणीय वागरा साहब और अपने बीच जो हमारी मित्रता है उसी के ऊपर एक गीत सुनना चाहता हूँ।
0: जी
1: फिल्म का नाम है दोस्ती। जब भी कोई राह न पाए मेरे संग आए, चिप गिप दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। बागरा साहब
0: मेरी
1: को
0: दोस्ती
1: सुनाता हूँ।
0: मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जी जी हमारा ये जो दोस्ताना है वो हमेशा बना रहे।
1: जी जी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में आपस में यूं ही प्रेम नेश में बना रहे और
0: बिल्कुल
1: आपसे वार्तालाप करते रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और किन लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी इसमें मैं समर्पित करता हूँ सर श्री अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेन वर्मा, राजू यादव, बाबा प्रेमदास जी हैं और साथ में पुरुषोत्तम जी, पुष्कर नाथ जी, राकेश कुमार जी, अर्जुन प्रधान, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर सुन रहे सभी श्रोताओं को बागरा साहब के साथ समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद जी कॉल करने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना दोस्ती फिल्म से।
1: जी हृदय धन्यवाद।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जय बजरंग रेडी को श्रोता संग वस्तैन बंडा वैली से लक्ष्मण को चाय वाले को चाय पी लो सर।
0: जी लक्ष्मण प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चाय ऑफर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कहिए कैसे हैं आप?
1: आज अच्छे हैं, तो तपा लग गए तो गर्मी तो आज से बहुत होने लगी।
0: ओहो जी जी जी जी, गर्मी का प्रकोप क्या करें, अभी इसे तो सहना ही है। जी तो गर्मी में चाय पिए तो शायद थोड़ी ठंडी आ जाए।
1: क्योंकि घर काम अच्छी चलती है।
0: ओके ओके जी, हाँ जी।
1: दोपहर थोड़ी डाउन हो जाती है।
0: ओके ओके जी जी, लोग घर से निकल नहीं पाते हैं ना, इसीलिए शायद लोगों का आना कम होता होगा। जी ओके,
1: बस तो एक ही उपाय है। अब तो देखे जैसे गर्मी तबा लग गए हैं तो आम का पना जरूर पी। आम का पने से क्या होगा, दिन भर ठंडक रहेगी और दही मठा ज्यादा खाएं तो उससे बीमार भी नहीं होंगे।
0: ओके जी जी, और लक्ष्मण जी ये गर्मी कौन से महीने तक रहता है आपके वहाँ?
1: ये अभी 15 दिन तो गर्मी कम से कम रहेगी, 15 महीना रहेगी अभी।
0: अच्छा, कौन से महीने से थोड़ी ठंडी शुरू होती है?
1: ये अपने जून लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद में हो जाएगी थोड़ी ठंडक।
0: अच्छा,
1: पानी मानी गिर जाएंगे दो चार लगातार तो ठंडक आ जाएगी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आशा करते हैं जल्दी ठंडी आ जाए ताकि सबको राहत मिले गर्मी से। और कहिए कौन सा फिल्म का गीत आज सुनाए आपको?
1: आज सुना दी अनाड़ी पिक्चर का है।
0: ओके, और गाने के बोल?
1: इसके बोले रहेंगे फूलों से चेहरा तेरा कुदरत भी हैरान है।
0: ओके जी जी जी,
1: हाँ, और हमारे दोस्त भी सुनना चाहते हैं।
0: हाँ जी जरूर जरूर।
1: हाँ, गजराज लोधी हैं, मांगी लाल चंदेल हैं, बसंती लाल सूर्यवंशी, बसंत कटारे हैं और अमित तिवारी हैं, जी सब दोस्त हैं जो सुनना चाहते हैं।
0: ओके, इन सभी दोस्तों के साथ आप सुनना चाहते हैं अनाड़ी फिल्म का गीत, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: ठीक है सर, नमस्ते।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: तुमने चाहा ही नहीं था, वरना हालात बदल सकते थे। उसकी आँख के आंसू मेरी आँख से निकल सकते थे। वो तो ठहरे रहे थे पानी और झील की तरह, अगर दरिया बन के बहते तो बहुत दूर निकल सकते थे।
0: क्या बात है, क्या बात है। अगर दरिया बनकर निकले तो बहुत दूर निकल सकते थे, क्या बात कही है। जी जी। और इसी के साथ हो जाए अपना परिचय।
1: साहब मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से बात कर रहा हूँ, चाकू वाले रामपुर से।
0: ओके अमरजीत जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप?
1: मैं सर काफी अच्छा हूँ, जानना चाहता हूँ आप लोग कैसे हैं, आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं सर?
0: जी हमारे यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, हम सभी अच्छे हैं। और आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: सर हमारे रामपुर क्षेत्र की बात करी जाए तो यहाँ पे सर काफी गर्मी पड़ रही है, अधिक से अधिक गर्मी है सर। करीब रहता है, टेम्परेचर रहता है 40-39 डिग्री रहता है सर।
0: ओहो जी जी ये तो बहुत ही भयानक गर्मी है जी। हमारे यहाँ तो अभी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही
1: अरे
0: बढ़िया है।
1: बहुत अच्छी बात है सर, हमारे यहाँ तो करीब बारिश अभी नहीं बरसी है। पिछले दिनों 20 दिन पहले बारिश गिरी थी,
0: अच्छा
1: और उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश पड़ जाए, कुछ गर्मी से राहत मिल जाएगी
0: जी
1: सर।
0: जी जी अमरजीत जी, आपने पहली बार कॉल किया या फिर आपने पहले भी कॉल किया था हमें?
1: सर मैंने जो आपसे इस प्रोग्राम में पहली बार बातचीत हो रही है, और पहली
0: अच्छा
1: बार बहुत प्रयास करने के बाद कॉल शामिल हो रही है, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, पहली बार कॉल लगा सर।
0: ओके अमरजीत जी, तो पहले तो हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू सर।
0: हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी
0: जी। और अब उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप हमसे जुड़ते रहेंगे आगे भी।
1: जी बिल्कुल सर, आकाशवाणी को मैं बराबर सुनता हूँ, और आपके केंद्र में मोबाइल ऐप पे सुनता हूँ, और मुझे काफी अच्छा लगता है सर आपके केंद्र से जितने भी प्रोग्राम रिले होते हैं,
0: जी
1: और सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो फरमाइश रहता है, जिसमें के सभी श्रोताओं की चुनिंदा गीतों की फरमाइश रहती है, जो आप लोग पूरे करते हैं सर।
0: जी जी जी पूरे देश से कॉल आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सभी से बात करते हुए। तो अमरजीत
1: जी
0: जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए हम?
1: सर मूवी का नाम रहेगा साथी, और इसमें जो गीत मैंने चुना है इस मूवी से, गीत के बोले आज हम तुम और सनम मिलके ये वादा करें, तू मेरे दिल में रहे मैं तेरे दिल में रहूं। सर दो लाइन में और कहना चाहूंगा।
0: जी जरूर जरूर।
1: के मत सताओ हमको, हम सताए हुए हैं, अकेला रहने का गम उठाए हुए हैं, खिलौना समझ कर न खेलो हमसे, हम भी उसे खुदा के बनाए हुए हैं।
0: क्या बात है अमरजीत जी, लगता है आपको शेरो शायरी के काफी शौकीन है आप।
1: जी जी जी
0: ओके
1: सर, मैं कहीं भी आकाशवाणी पर जब मैं फोन कॉल करता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं शेर शायरी से ही शुरुआत करता हूँ, और जितने भी श्रोता लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं साथी,
0: जी
1: तो मेरी आवाज पहचान गए होंगे, क्योंकि मैं भी जब सभी श्रोताओं की आवाज सुनता हूँ

0: तो खाली हेलो करने के बाद ही उनकी आवाज पहचान जाता हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और जो सर हेलो फरमाई से एकता ग्रुप है जिसमें के लोकेंद्र वर्मा हैं,
1: जी
0: उनको भी इस गीत में शामिल करना चाहूंगा और जितने भी साथी लोग सुन रहे हैं सभी को, और साथ में आप भी रहेंगे। अमरजीत में हूँ सर।
1: जी जी जी, जरूर जरूर, मैं भी सुनूंगा आपके साथ इस गीत को। तो अमरजीत जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: थैंक यू सर।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर
0: ओ भाई कौन मुंडा, ভাল লাগিছে দেই আপনার কল রিসিভ করি। আর আপনি কেনে কোয়া?
1: বা ভালে আছে, আপনার সব ইটানগর সকল ভালে আছে না?
0: হয় হয়, আমি ইটানগর সব কিছু বহুত ভাল। আপনার তাত কেনে কোয়া আছে? এটা ওয়েদার বরখন দিছে জানো?
1: বরখন তো আজি দিয়া নাই, আজি তো দেই আছে।
0: আচ্ছা আচ্ছা,
1: লকেন লকে বরখন আছে বড়।
0: ওকে, আমার ইয়াতো বরখন দি আছে।
1: হয় ইয়া আমি হিন্দিতে পাটনে।
0: ওকে, হিন্দি হয় হয় হয় হয়, হসা কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, तो अपना नाम और परिचय बताइए।
1: मेरा नाम है भाकुर मुंडा, मैं चौराहे डिस्ट्रिक्ट सरारी असम से बोल रहा हूँ।
0: ओके जी,
1: आज मेरा पसंद का गाना है, फिल्म का नाम है जमाना दीवाना, 1995 में रिलीज हुआ फिल्म है।
0: ओके,
1: गाना है साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खपा क्या है तेरा फैसला, गाना है। वो गाना का टाइटल है और अब्बा।
0: ओके जी जी जी, हाँ जी जरूर सुनेंगे।
1: गाना सुनना है और दोस्तों के नाम डेडिकेट करना है।
0: जरूर जरूर जी जी।
1: अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, जोगिंदर रोंगपी, रमेश पात्र, रुनु पात्र, लाखी और अंजलि बसुमतारी, और जितने भी अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर, सभी के लिए डेडिकेट,
0: सभी को आप डेडिकेट करना।
1: बागरा सर आपके लिए भी रहेगा।
0: ओके जी, मैं भी जरूर सुनूंगा आपके साथ। तो भाई कौन मुंडा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: जी नमस्कार, मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था जी।
0: जी मनोहर लाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी आपका भी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए कैसे हो आप?
1: ठीक है जी, दुकान पे बैठे हैं यहाँ पे।
0: अच्छा जी, आपकी दुकान है अपनी?
1: हाँ जी दुकान है, यही अपने ऐप के थ्रू हम ईटानगर के प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: प्रोग्राम होते हैं।
0: क्या बात है जी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस चीज की दुकान है आपकी मनोहर लाल जी?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी तो
1: संगीत से ज्यादा जुड़े रहते हैं हम।
0: अच्छा ओके जी
1: अभी
0: जी।
1: भी मैं जो है सेक्टर 62 नोएडा में हूँ, तो वहाँ जा रहा हूँ मंडी हाउस।
0: अच्छा
1: वहाँ एक हमारा प्रोग्राम है म्यूजिक पर।
0: अच्छा ओके ओके। और किस तरह का प्रोग्राम?
1: ये लाइव बैंड के ऊपर होता है प्रोग्राम यहाँ पे।
0: अच्छा, तो आप भी उस बैंड के मेंबर है या फिर आप जस्ट सुनने जा रहे हैं?
1: जी जी मतलब बुलाते हैं दोस्त, हम चले जाते हैं।
0: अच्छा ओके। अभी मौसम तो गर्मी होगी शायद वहाँ पे?
1: मौसम हाँ गर्म है, गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है इस टाइम।
0: ओके,
1: ध्यान रखना पड़ रहा है।
0: तो ऐसे में भी प्रोग्राम चलता है?
1: हाँ जी प्रोग्राम चलता है, वहाँ तो हरियाली होती है मंडी हाउस में जो है श्रीराम सेंटर है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके।
1: बहुत से ऑडिटोरियम है वहाँ पे।
0: अच्छा
1: वहाँ ऐसी
0: ओके।
1: बात नहीं हो, म्यूजिक हो तो फिर गर्मी।
0: हाँ जी हाँ जी, म्यूजिक के आगे तो गर्मी कुछ चीज ही नहीं है।
1: अब ईटानगर हमारा फोन लगा,
0: जी
1: सारी गर्मी दूर हो गई, ठंडक का महसूस कर रहे हैं।
0: क्या बात है जी जी, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है वैसे।
1: जी जी हाँ, तो वहीं से ठंडी हवाएं आ रही है लग।
0: जी जी जी। और आप पहली बार हमें कॉल कर रहे हैं मनोहर लाल जी?
1: नहीं बहुत पहले किया था मैंने।
0: अच्छा अच्छा, पहले भी आपने किया था। ओके
1: हाँ जी, हमारा ग्रुप है ना हेलो फरमाइश एकता ग्रुप, तो वहाँ हमें जानकारी प्राप्त होती है, फिर हम कॉल लगाते हैं, फिर हम प्रोग्राम
0: अच्छा,
1: सुनते हैं।
0: क्या बात है क्या बात है जी जी, इसी तरह से आगे भी जुड़ते रहिए हमसे।
1: जी
0: जी। और कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: ये फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते।
0: ओहो जी जी जी। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: यही दोस्त है हमारे लोकेंद्र वर्मा जी हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं, राय भोले जी हैं, और भी बहुत सारे मेंबर हैं हमारे ग्रुप के, सभी के लिए मैं ये गीत
0: सभी को आप डेडिकेट करना। ओके, तो मनोहर लाल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: ये बहुत बहुत
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी इलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं महाराष्ट्र
0: जी
1: ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम यादव बोल रहा हूँ सर जी।
0: तुकाराम यादव जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप?
1: हम ठीक है, आप कैसे सर जी?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: और आपका ईटानगर परिवार?
0: जी ईटानगर परिवार भी बहुत ही बढ़िया है और यहाँ का मौसम भी बहुत ही सुहाना है, बारिश हो रही है बाहर। जी
1: अच्छी बात है, हमारी तरफ थोड़ी भेज दो, हमारे इधर कड़ी धूप पड़ रही है।
0: ओके जी, कोशिश करूंगा कि थोड़ी आपके वहाँ पे भेज दो बारिश, ताकि आप सभी को धूप से राहत मिले।
1: जी जी
0: जी तो कहिए तुकाराम जी, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: फिल्म का नाम है शागिर्द।
0: ओके।
1: और गीत के बोले दिल बिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे।
0: वाह वाह वाह, दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, बहुत ही बढ़िया गाना है। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: हाँ, सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद।
1: हमारे मित्र गौतम राय बोले जी, लोकेश वर्मा जी, गंगाधर सावनकर जी, सुनील दास जी, दिलीप पहुजा जी, धीरज भाई रबारी जी, रामचरण विश्वकर्मा जी, पीएसआई राज शेळके जी, कांताबाव रामगडे जी, विठ्ठल पवार जी, सतीश गाडगे जी, किरण शिंदे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेळके जी, श्रीकांत भंडारे जी, विजय पाटील तारुकर जी, रमेश जाधव जी और उदय काळे जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं।
0: तो इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं सागर फिल्म के इस गीत को। ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर
1: जी। नमस्कार, कैसे हैं सर
0: जी? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: आज तो पहली दफा जुड़ा हूँ, पहली दफा कॉल लग गई।
0: अच्छा
1: बहुत,
0: ओके।
1: मगर बहुत बहुत दिनों में कॉल लग गई। आप बहुत देर से कॉल आ रहे हैं, आधे घंटे से कॉल आ रहे थे आपकी।
0: अच्छा अच्छा जी, काफी लोग कॉल कर रहे थे ना, इसीलिए बिजी था
1: जी। मैं रेहान बोल रहा हूँ, जिला रामपुर एसवा मिल्का खान से।
0: ओके रेहान जी, सबसे पहले तो हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं।
1: जी जी जी जी नए नए सतह को मौका मिलना चाहिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत

0: जी अच्छी बात है। इसी तरह से आप आगे भी जुड़ते रहिए हमसे रेहान जी।
1: हाँ जरूर जुड़ेंगे और वैसे भी ग्रुप पे मस्ती ग्रुप पे होंगे आपके पास और रेडियो पे सुनेंगे आपकी।
0: ओके जी जी जी।
1: और बताइए मौसम कैसा आपने यहाँ का?
0: हाँ जी हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ही बढ़िया है, बारिश हो रही है।
1: यहाँ तो बारिश हो गया तो कई दिन से गर्मी इतनी लग रही है, धूप में धूप तेज हो रही है।
0: ओके
1: 11-12 बजे तो 39 और
0: बाप रे
1: डिग्री होती है बस।
0: जी बहुत ही भयानक गर्मी पड़ रही है वहाँ पे।
1: जी जी जी जी
0: जी। तो रेहान जी पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैं कहना चाह रहा हूँ थोड़ा अपना ख्याल रखें और सावधान रहें, मैं और गर्मी में ना निकले बाहर ज्यादा, अगर निकले भी 11 बजे से 4 बजे तक घर में से ना निकले, अगर निकले तो अर्जेंट तो छतरी लेके जाए।
0: जी बहुत ही अच्छी बात है। जी जी जी छाता लेकर निकले अगर जरूरी हो तो, बहुत ही अच्छी बात है।
1: ज्यादा ठंडा पानी यूज करें और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक ज्यादा यूज करें और नींबू पानी ज्यादा यूज करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि वे आपके बताई हुई इन बातों को जरूर अपनाएंगे और अपने आप को गर्मी से बचाएंगे।
1: जी जी जी जी जी जी, जी, जी। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा आया आज, आज बहुत खुशी हो रही है।
0: जी हमें भी बहुत ही खुशी हो रही है नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं।
1: जी बहुत बढ़िया है, आप ऐसे आते जाएगा जरूर कॉल जरूर लगाएंगे।
0: ओके
1: चिट्टी मस्ती ग्रुप पे आपको।
0: ओके जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुना है रेहान जी?
1: आज तो वैसे भी ईद के दौर आ रहा है, 28 मई की ईद है, तो ईद के मौके पर गाना सुनना है, हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का नाम।
0: ओके
1: गाने का बोल है चार नजर आ गए अल्लाह अल्लाह छा गया रोजा रखने वालों की ईद।
0: ओके जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे आप इस गीत को?
1: वैसे पापा है, अम्मी है, भतीजा भतीजी, पूरा परिवार सुनना चाहते हैं, अमरजीत भाई सुनना चाहते हैं।
0: ओके तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई। सुनते हैं आपके पसंद का गाना हीरो हिंदुस्तानी फिल्म।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, ये आकाशवाणी का रुन एफ एम है, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: The Office of the District Magistrate, Capital Itanagar, has observed that illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell, and the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
4: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में 2 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिडडे न्यूज, और 2:15 पर आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। दोस्तों आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी 2:30 पर, यानी कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। तो दोस्तों अब समाचार से पहले आपके लिए पेश कर रहे हैं खूबसूरत गीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से।

0: अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि DK शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
5: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
6: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
7: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ

0: अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रद्धा भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज सदा दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s।

दोस्तों कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म खुदगर्ज से। गीत के बोल हैं आपके आ जाने से और इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीर और साधना सरगम ने।

दोस्तों आज ईद का दिन है। जी हाँ, गले आज तो मिल ले, नफरतों को भूल कर खुशियाँ दिल में भर ले। दोस्तों ये पावन त्योहार आपके जीवन में खुशियाँ और बरकत लेकर आए। बकरीद मुबारक। शुदा ईद अल अदा, जिसे भारत में बकरीद या ईद उल अजा भी कहा जाता है, इस्लाम का एक बड़ा त्योहार है। यह इज्जत इब्राहिम की कुर्बानी और अल्लाह के प्रति उनकी आज्ञाकारिता की याद में मनाया जाता है। इस त्योहार की मुख्य बातें मुसलमान सुबह विशेष नमाज यानी ईद की नमाज अदा करते हैं, इसके बाद कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों कुर्बानी के गोश्त को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, परिवार के लिए, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए। इस त्योहार का संदेश है त्याग, इंसानियत, बराबरी, गरीबों की मदद करना और अल्लाह के प्रति समर्पण करना। दोस्तों अब चले कार्यक्रम में लौट आते हैं हिट्स ऑफ 90s में, और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश है गीत फिल्म कयामत से कयामत तक से गीत। गीत के बोल हैं ए मेरे हमसफर, और इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

दोस्तों आप सभी को ईद मुबारक। इस मौके पर आपके लिए पेश कर रहे हैं सब 90s में गीत फिल्म तुमको ना बोल पाएंगे से सोनू निगम और अरविंद सिंह स्नेहा पंच की आवाज में ये गीत।

दोस्तों आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम पर और मैं हूँ आपके आज साथी दापा। दोस्तों आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s और कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में अब आपके लिए पेश है गीत फिल्म मासूम से गीत के बोल है ये जो तेरी पायल और इस गीत को आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम ने।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस और उसके तुरंत बाद लक्ष्मी कमान और तयकामती श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: दिस इज मॉर्गन बागरा विद टुडेज न्यूज हेडलाइंस। President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greets people on Eid-ul-Zuha. President Draupadi Murmu confers the prestigious President's Police Colour to the Sikkim Police today. Sikkim has become the 15th state of the country and third from Northeast to receive this award. India and China reviews situation in border areas, express satisfaction with progress made in maintaining peace and tranquility. Prime Minister Narendra Modi pays tributes to former Andhra Pradesh Chief Minister and popular film actor N.T. Rama Rao on his birth anniversary. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar meets his Spanish counterpart Jose Manuel Alvarez on the sidelines of the Cyprus Gymnich meeting today. In a social media post, Dr. Jaishankar said that the meeting involved discussions on the next steps for trade, technology, defence and people-to-people ties between India and Spain. National Testing Agency releases revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate 2026 examinations. Examinations to be conducted on 31st of this month and 6th and 7th of next month. Union Education Minister Dharmendra Pradhan assures students that the Central Board of Secondary Education's newly introduced on-screen marking system is a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency. The Ministry of Youth Affairs and Sports to engage IT consultants in national sports federations under National Sports Digital Ecosystem to strengthen sports governance and Commonwealth Games 2030 preparedness. In badminton, PV Sindhu defeats Japan's Riko Gunji to enter the Singapore Open quarterfinals. Indian contingent all set to play in under 18 Asia Cup Hockey 2026 beginning in Japan tomorrow to June 6th. That's all in this news headlines. Namaskar.
2: Anja Akashwani Itanagar to Halut lai se laka tarik talmo grin samna lao hinging talmo tam to phlo bajik samna kaman king lai kong song fo la ke province me pong dangin fa lai kong song climbing set ka gya chi. Wada Prime Minister Narendra Modi ka Swachh Bharat Mission 2.01 dam hik set implement kan hik tang da dat la. Set ka regular monitor ura ka citizen participation ura ka lang lang stakeholders na rugune ka kand kar hik thau ka da dat la. Ura ka wopingo kumo pragati meeting New Delhi lak Mr. Modi ka states sanyun ek set ka solid waste management ura ka Govardhan plants mdiam hang set ka tak kar hik thau ka da dat la. Ura ka meeting lang hing sengyap mo karol fa project to live nan railway Power Vra Karot Munjam Sunday review kan gada datla. Vraka State Governor Lieutenant General Retired KT Parnaikwan Yuva Sangam Program Ek Bharat Stress Bharat Participate kan gada datla Lok Bhavan Itanagar lag. Governor Van Willing Uttar Pradesh Nang North Eastern Region Institute of Science and Technology Neris Sasani Phun gada datla. Governor ka Youth Sanyi Program and Ring Gai Participate kadhe thau gada datla. Vraka Governor ka Youth Sanyi Ksatka traditional values braka indigenous knowledge braka language culture practice braka environment mjam san chaw to ba tam san dam nek dang da la braka IIM students sa mo tam jam san north east region bare hin ngin mata da khai tha ka braka chief minister Pema Khandu ka state leg ILP phakcha department to tra samang da khai tha ka illegal immigration am tham da thi meeting ganta nan kan gatam jam no tribal Rights ILP framework uraka APST mdam sandam him state banquet hall itanagar lak samdam jam nak khandu ka nan member delegation Arunachal Indigenous Tribe Forum ST Bachao Andolan committee uraka illegal expats and week cha high level meeting trangna mu kada datla uraka meeting one deputy chief minister chawna men uraka student bodies legal experts political parties CBOs uraka civil societies and ho kada datla Raka administration Itanagar Capital Region ka Charles Sinanja he to be thisan dom jawan ban kada datla raka jam lang final lagi man khai thau mun Deputy Commissioner Aisha Toko Babu ka ben issue on bang in kan kada khai thau mun Agriculture Produce Marketing Regulation Act 1989 raka Essential Commodities Act 1955 wan gong lakan kada raka Babu वन चार पाँच चार पाँच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट फार्म मंजाम का था का हिंग तलम फाइन लगी इमद रिसी कने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईटानगर नहलगन भी तो ना पासनर ने डिप्लॉय कर मंजा वन था दादला ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बैंक इन सौम रोड साइड हे नेशनल हाईवे 415 गाय हे सिन दुकान सौ दुकान का संग से दुकान नाम दम सनी गल के मंगों तमान चुई था दादला अन पब्लिक हेल्थ ना ट्रैफिक कंजेशन समन मजाम हे कर्मोता दा खाय थाउमन नगा कोऑर्डिनेशन मीटिंग था कता दा खाय थाउम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 मजावन दाम हे लांग लांग पॉलिटिकल पार्टीज फाय कॉन्फ्रेंस हॉल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिस लिकाबली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट लग इलेक्शन ऑफिसर गोबी निक्योर तुआ फाय मीटिंग वन स्टेट गुंग लग एस आई आर चुलीवान दाम तक हेतुक तांग हे कन कता दा खाय थाउमन रगा डिप्यूटी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कार्डो निग्योर कक्षित का अन्य फलोत का ठेठाव का दखाया था उम्र का शाम आउटसाइडर हूँ दमसन ने रिंग का वेरीफाइड कर उम्र का पॉलिटिकल पार्टी सन ने रिंग का पार्टिसिपेट का ठेठाव का दखाया था उम्र उम्र का मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रोजेक्ट एसोसिएट सी एच सनातन सिंह का रिवर्ड सेंटर ठेका दाद ला मदर लैंग्वेज दाम ही उम्र का लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट लग सिंगा वन आर सी एम एल ने रिव्यू कन का दादला का प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का सपोर्ट कर मोता डिपार्टमेंट इंडिजिनस अफेयर्स गोलमजा वन ने थो का दखाया था उमन का हिंग सिंगा मकमो ग्लाट राम सिंह ग्लाट सियांग अपर मल्टीपर्पोज प्रोजेक्ट वन फा रिपोर्ट ने सबमिट कन का दखाया था उमन दुंगे अपांग का डिप्यूटी कमिश्नर अपर सियांग तलो जेरंग वी वी ऑफिस लग submission on administrative officer raka heads of department raka members of pro feasibility mjam sanjang thalakan kada khai thaumun raka district level narco coordination center meeting ne tha ka da khai thaum conference hall deputy commissioner office tawang lak wednesday rat meeting one lak tawang deputy commissioner namgyal angmo ka stakeholders an viru ne ra ne ka corporate ka thau ka da khai tha ka raka wan gung lak चाइल प्रोटेक्शन का ड्रग एब्यूस गुंगे फिली मंडाने का ताक दखाया था उमन का एस पी तवांग तासी दरंग का ट्रैफिक पुलिस ने डिप्लॉय का सामान रखाया था का उमान किंग लाइकों सौ फाइमन तो किन को मान जाए ज्ञात है।

जब सभी आप सुन रहे थे मिशमी कमांड और तय कमती श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब चलिए समाचारों के बाद अब आपके लिए पेश है हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला, और इस सेगमेंट में आपके लिए पेश कर रहे हैं कॉकटेल फिल्म से गीत। ये के बोल है तुम ही हो बंधु, और इस गीत को आवाज दी है नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने।

दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म यानी कॉकटेल 13 जुलाई 2012 को रिलीज हुई थी। इसे होमी अदाशिया ने डायरेक्ट किया था और इसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी एक लव ट्रायंगल पर आधारित है

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत कॉकटेल फिल्म से, और अब चलिए फिल्म गानों से ब्रेक लेते हुए अब थोड़ी ही देर में आपके लिए पेश होंगे वांछ श्रोताओं का समाचार।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि मेलेन मिनिसा आचत्तर बृहस्पतिवार इपहसों आजम भाजी पुनी मिनट मुख्य पेशम लक्यम वांचो साइका पां कपई पवन कहवा पाई फाले वंग का वंग सुवे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 मोटो इंफ्रास्ट्रक्चर हूं जिंगजौल अलाई अदन की चंगल खले यौ टिकटो बोमा सिटीजन खनक नु नोक हकवोन ले हिट खित ले यौ मोकसा अंक्या मोट ले वन ले। मोदी ए जका न्यू दिल्ली मा चीमा आखो ले आसो आफो क्या होथम पुनि बन मता अंग प्रगति मीटिंग टू सो मा वनले बोमची ए स्टेट फो अंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट सिया गोबर्धन प्लांट मोटोफो चोन खाई ले मोकसा ले लनहै ले चु वनले बोमा प्राइम मिनिस्टर ए जा टू सो मा हक आकु स्टेट मा हाजा बन कु ती तकु जंगुन सेन को ओदोइले मोंगनुइ सांगो ताइके हक आनत खत खा खा जौ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फो होमो को से थोप मन प पक्चु टिकट तोले। अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी परनाइक मनी ईटानगर लोक भवन मा एक भारत श्रेष्ठ भारत मठो मखंग ए आंगोत आसो केता युवा संगम प्रोग्राम टूसो मा हकले। गवर्नर एजा महाजा टू सो महाकहाई क्या उत्तर प्रदेश स्टेट तोखंग एक्या हिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट अंक्या लाइन नौसम फै जंगवन का जेले मोमा गवर्नर एजा चासन फो अंग हालक्या कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अचोंग आचन अंक्या हिया तातानु फै आसई असम अंक्या होली प्रोग्राम फो मा खल्ले जो हकवोन हम हई ओले वनले बोमची ए उत्तर प्रदेश स्टेट तोखंग ए आईआईएम लाइन नौसम हाले वांग्या ए स्टेट चा सनफो फै ऐ पाजु खुई होजु तामताइ ले आसाक अमोंग ले तो अंक्या बोमा होम ए नॉर्थ ईस्ट रीजन हिया रीजन खनक नुबा मा पंगनु चिंग वाले का अंक्या ले ओंग हुतै पुले छु वनले। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए इलीगल इमिग्रेशन अब अवं अंक्या होमोको सथान पंगमा स्टेट मा आसियन ले जौता आईएलपी डिपार्टमेंट डाप जिंगै ले वनले। खांडू अजका मनी ईटानगर मक्या स्टेट बैंक्वेट हॉल मा तुसो अखो अंगची अंगोल ले घोंटा अन्न जोहान पंगमा आसो अपो के इंडिजिनियस ट्राइबल राइट्स सेशन अंक्या आईएलपी फ्रेमवर्क हिया एपीएसटी जू मक्या कंसल्टेटिव मीटिंग तुसो मा ngai वनले बोमा हजा तुसो मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेन लाइन नौसम नु होथम फो लीगल एक्सपर्ट थम पॉलिटिकल पार्टीज फो सीबीओ होथम फो हिया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होथम फो जो हा कहिले बकले। खांडवेज बा मा हजा तुसो मा फन बन दौ क्या कांगो फो मो ताम हिट ले वनजे अंगाइनी ता हाई लेवल फॉलो अप मीटिंग तुसो असो अफो अंग अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइब्स फोरम अपसु हिया एसटी बचाओ आंदोलन कमिटी होथम मखंगमी होक आनत मेंबर पे क्या डेलीगेशन होथम बोमा लीगल एक्सपर्ट थमले न्याक से दवाल चु वनले। ईटानगर कैपिटल रीजन आईसीआर एडमिनिस्ट्रेशन थम ए रीजन मा था अंग हंगसन अंग न्या मिथुन ओवा एचु तालंगता होक ओल क्या का कोडवा हाजा का आईसीआर डीसी हिया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी होथम चेयरपर्सन चु आजब क्या मी तोको बाबू ए मनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट 1989 हिया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 वालम तो ले कोले बोमा डीसी ए हाजा ऑर्डर का मा हाजा का अंगौलियन ले न्या लंग हक क्या मी मा मुन जाचापोंगले सांग सांग क्या है ओलक्य का चुपाले तैले। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आईएमसी होथम ए मनी ईटानगर कैपिटल रीजन जंग मा नेशनल हाईवे 415 लमनु शोई नाम तो पाले तानहंग ले मो क्या maynya suelai hiya panjum zongjak dukan pho hai angki ni ban ba ma vai nok zakapau ano lakya ka kodwa kahuma ajang ba jak ka public health hiya lam asai to gari ghora traffic athut ahut la sat hu kya kho ma ko ton kya chang tai le lower siang district likapali honwei ma mani dc conference hall ma district election officer gobi nikyor a special intensive revision sir 2026 motomo vanase ang momomo political parties for representatives tham phaita coordination meeting to so aso apole aja meeting to so stakeholder tham ang state ma pangnui to wai mokasa angkya mut chingkhanak nu manjalai special intensive revision sir motobam apuanola koton ang angwata sokya changkya boma haja tu soma arunachal pradesh legislative assembly deputy speaker cardonic your m haja sir motho sakle jo holam tole mokasa hai ole vanesele upper sing sing makya ram sing nok makhang a siang upper multipurpose project sump one project zingijau angkya ka angau to changle le phong taikya hamko chaban mata man list mani dunge apang a upper siang district dc talo jerang chakma kodwa kahuma ayang baja hamko man list dc office ma administrative officer tham mawmamu department po akho kemi tham hiya pro pre feasibility report pfr families members tham yepam tho ma cotton le kaho ivai
0: dosto bhi aap sun rahe the vancho shadav ka samachar vancho shadav ka karyakram aap aage aur bhi sun sakte hain hamare medium wave channel 444.6 meter yani 675 kilohertz tatha drm 666 kilohertz par ab aap bane hue hain mere sath yani apne rj दांपा के साथ आकाशवाणी के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

और दोस्तों, अब आपके लिए पेश है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम में आपके लिए पेश है पहला गीत फिल्म कहो ना प्यार है से। गीत के बोल है ना तुम जानो ना, और इस गीत को गाया है लखी अली ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे गीत गैंगस्टर फिल्म से केके के आवाज में। आपको बता दूं कि इसके साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में 4 बजे आप सुनेंगे ईद उमिसमी श्रोताओं का समाचार।
1: ईटानगर केंद्र है, आइए सुनते हैं ईद उमिसमी कार्यक्रम।
2: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर शुवाला पुची जानो हियो रोलिनी एतानिची ईद उमिसमी आहोला किजी दरगालंबो अतिका से दे अखावे मचे स्वच्छ भारत मिशन है प्राने जनवर अरुण दगादा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में वना मे दिल्ली माने मंगल हूँ खेली नब प्रगति मीटिंग ची नगा महो लगाने गोवर्धन प्लांट तो ने इकिशा ताइची आप प्लांट लापागे अतिका से दे अखावे मचे जोते हुए अरुण दादो शो ने गाते हुए अरुण दगादा लगादा आहोगा आयु आलम्बर में इंडिया अतिका एम एम खो नोगा अखावे चिपुआ अतु तिचिना ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पटनायक मैम बुनी ईटानगर ची लोक भवन मने उत्तर प्रदेश तो ने निर्जुली नेरिस माचे आजो आयता मैं आनंद गो ची जगह महोन लगाने अतिका इकिशा तो तमाचे इमु गो शिनो नो ने ची जगह तगाजी ना लगाता आओगा आउता ची गो प्रातो बारोगा चिम्बुम्बो मैं आनंद में एन एच बहाने इनका जा आतो चेदो तो ने किसा ये चु प्रांतो बुजिना ने गवर्नर में लाओगा ता आओगा इन आइलैंड आज प्रहाव चिपुआ आतु तिगानों के बने डिपार्टमेंट में के आज तिगा उदा ने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में ला होगा ने अली आज तिगा ने आई एल पी आज प्रा आज की पिगाजी में तानिगा ना उदा ला होगा चीफ मिनिस्टर में बुनी इटर गवर्नमेंट ने आई एल पी तो ने अरुणाचल प्रदेश एस टी सर्टिफिकेट आजप्रा चिपुआ मीटिंग चीनगाने अली लगा महोम आ थपु चिपुआ ची जगाओ के बने अनाया अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइब्स फोरम ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आपसू दो ने अरुणाचल प्रदेश एस टी बचाओ आंदोलन कमिटी माचे इमु आई दो ने इकिशा आसला इमो नो आ थपु चिपुआ ची जगाओ जा मीटिंग मा इगा ना रैला दा ला होगा बुनी ईटानगर ची बैंकर हॉल माने चीफ मिनिस्टर में मीटिंग चीनगा मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मैन स्टूडेंट्स यूनियन कानून आचू आसला पॉलिटिकल पार्टी नंबर दो ने सीबीओ ने सिविल सोसाइटी ममाचे इमो अनुभव में गिगा बदा ला होगा ईटानगर कैपिटल अतिकाचे मार्केट मा शाह चेते ने अमय जिम ना ने कैपिटल देशी तोको मापू में बुनी लाते बदा होगा इन मामलों के हम मंगल मंगल माचिन होची एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट आचू ऐ दोने इन मामलों के हम यूरो के नी माचिन होची एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट आचू को कोमाने दिशी में ऐ लातेगाने शा जगे ने अम्मे यागाने एजर बाजी हो पाऊ पो आशिगाओ दा लातिया बदा आहोगा एपीएमसी मेंबर आलम्रो में आचिपो अतो सुची नाने ए पी एम सी चेयरमैन जो होगा दिशी में लातेगा ने अतुशिया ए पी एम सी मेम्बर आलम्बर शो ईटानगर ने नाहलगन मचे एस पी एस आलम्बर में पुलिस अहाजी ना लाते ओबदा होगा आ महो ईटानगर कैप्टन लातेगा ची नेशनल हाईवे एच नंबर मौका पे ने होलोमा आय पे का ताइबा एगज बुदा लाने आ एच मचे आय पे का तांबे दो ने अनाप्रा अमय जिम ना ने ईटानगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आई एम सी में लातेगा ने जिहू कोको महो तांबे दो ने अनाप्रा अमय मो आज तेगा चंदो में इन्हें अही लाजे न बना लातेगा बदा आहोगा अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में चे डिप्टी स्पीकर कार्दो निक्योर में बुनी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट निका बलिया ते कोची दिशा ऑफिस माने अरुणाचल प्रदेश में चे बोर्ड आजपो आजप्रम बोचा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अखगाई बो चिपुआ मीटिंग जिनेगा ने आउता ची मु में अरुणाचल प्रदेश में ची बोर्ड आज पोमा अमु अखगा जी मी अतिका ची मु के बने अतु तेजे ना लाग बदा होगा पॉलिटिकल पार्टी ने भी में अब आराम ची मु रूपया ना बोर्ड आज पोमा अख जिम ना ने डिप्टी स्पीकर में लाओगदा होगा दुनिया मिनिस्ट्री मचे प्रोजेक्ट एसोसिएट सी एच सनातन सिंह मैम बुनी लोअर डिबलगढ़ डिस्ट्रिक्ट रोइंग खिंजिलाती कोचे रिवाज कोकोखागा रिवाज मदर लैंग्वेजेस सेंटर मा अथु एबाने आ सेंटर में अरुणाचल प्रदेश माखागा ट्राइब एबा मचे निभाव एगा एको बथो बुचिपुआ प्रांबान जोगाजी बुदा नरोगे बादा आहोगा अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट राम सिंह अतिकोची आसुरो खेगे ओंदो अनाशी में एजन बाहो के मेगावाट सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सुंप अजिते हुए लगा मा आशुगाजी दलाने डोंगे अपंग में यंग्योंग डीसी ऑफिस माने डीसी तालो जेरांगो एमओयू अंबोतिगा बादा आहोगा तवांग डीसी नामग्याल आंगमो में बुनी एनकोर्ट मीटिंग चिनेगाने आतिगाची अरुंदा इमुके बने जरूरगा ने आयमुगा ट्रक अनिवे चिपुआन चम्पुची लगादा आहोगा आ महो आउता ने इगा कारण है ट्रैफिक पुलिस में आय चिप्रा ने एक चिपुआ जपगा लदा ने तवांग एस प्याजा तासी दरंग में ला होगा एतनी ईद मिशमी आहो अली माओ दुबाए ए चा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ नाली ईद मिशमी प्रोग्राम में एचमता आशे अहोसो खिया महो एतनी हेन्दो सीमा मेना चाशे चे अंजी।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ईदू मिश में श्रोताओं का समाचार। ईदू मिश में श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडिया वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 के लहर्ज तथा डीआरएम 666 के लहर्ज पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारे दूसरे प्रसारण सभा के अंतिम मोड़ पर और वक्त हो चला है मेरे आपसे अलविदा कहने का। पर जाने से पहले आपको बता दूं कि अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे थामसा श्रोताओं का समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे नूरी जी। हमारे इस दूसरी प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता एच एम भूषण। और अब मुझे यानी अपना आरजे साथी दंपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मछौसा डुबार रंग बलई मेजिलिंग रंग्रमचे तारीख आरो रंगजा बलैबई खुमनी थोड़ीजामसो तंगसा प्रोग्राम तफंगराई मछौ रंगजा रुंगलांग रोकवांग कुनका मामाई र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर नरीम सेरंग अखेक रारंगवरो न्यू दिल्ली नंग 51st प्रगति मीटिंग कथुंग तो प्रजु मसौ फानबाइते नंग फानद प्राइम मिनिस्टर मोदी र वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स नै गोबर्धन प्लांट्स दान नंगम आरो सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर काम जालौम तचेरंग मोरोद परजु मोदी र कुति हाजक सुनसै का तगौखा स्थित तामंग रेलवे सेक्टर नंग नै पावर सेक्टर नंगला परम रोड सेक्टर ताम नंग सनन खा अरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ताम अरु कमुंग नंग रफान द मनीषा ईटानगर नंग लोक भवन नंग एक भारत श्रेष्ठ भारत जखुंग युवा संगम प्रोग्राम तथुंग तपरजु अरुणाचल प्रदेश गवर्नर के टी पर्ने कछु तो मोफान द इर प्रोग्राम नंग उत्तर प्रदेश वंग लिवनसा नई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस वंग लिवनसा थोक्त हेंगजाम गवर्नर मसौ रफान तपरजु कल्चरल अंडरस्टैंडिंग त्रयांग प्रोग्राम नंग नई इमोशनल बाउंडिंग तयंग प्रोग्राम्स नंगरा परम नंगमुंग मंग थयुंग प्रोग्राम्स ताम नंग नरी कचुरंग रारु मोरो जराउ जसा हेंग लिवन सा मोरो खेत परजु गवर्नर आकिंग थुंग लाइ प सलीरंग मोरो नै इंडिजिनस नॉलेज रा लैंग्वेजेस रोरी नै कल्चरल प्रैक्टिसेस ताम प सली रंग रारु मोरो दब जराउ जचा हेंग मोरो त आरो आईआईएम वंग लिवन सा थौरो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जमने नॉर्थ ईस्ट वंग मई यम रतक तक प तचेन छि मोरो अपीर रतुंग रंग गवर्नर रफान त अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र

0: हमें नया मौका देती है कल की गलतियों को सुधारने का और आज को बेहतर बनाने का। हेलो श्रोता दोस्तों, मैं हूँ आरजे नूरी और आप बने हुए हैं आकाशवाणी के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर हमारी तीसरी प्रसारण सभा में। अरुण एफएम के इस सुरेले जीवंत और आत्मीय मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप हमारे साथ बने हुए हैं और मैं आप सबका अपना हम सफर इस शाम का, और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रिय आरजे दंपक को, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से स्टूडियो और माहौल को हमारी टीम के हवाले किया। और इस प्रसारण यात्रा में मेरे साथ मौजूद होंगे प्रसारण अधिकारी श्री गोपाल राय तथा तकनीकी संचालन की कमान संभाले हुए हमारे तकनीकी अभियंता श्री ताना आतुम, जो सुनिश्चित करते हैं कि हमारी आवाज साफ सटीक और सीधे आपके दिल तक पहुंचे। दोस्तों, इस समय आज की पहली प्रस्तुति यानी कि सफर का यह पहला कार्यक्रम आप सभी के लिए, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

तरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। दोस्तों कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरा कार्यक्रम, आप सभी का स्वागत करते हैं। तीसरे प्रसारण की ये पहली हमारी पेशकश है जहां हम नजर डालेंगे आज के प्रमुख समाचार शीर्ष समाचार पत्रों पर जो लिए गए हैं हमारे अरुणाचल टाइम्स के 28 मई 2026 के संस्करण से। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को बरकरार रखा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्वचालित बनाने हेतु असिस्टेंस इन रेशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम स्कीम को मंजूरी दी है। सीबीआई ने नीट के पेपर लीक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को दोहराया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम घोषित की गई है, योगा फॉर हीलिंग एजिंग। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक कूटनीतिक मंचों पर मध्य पूर्व के तनाव और संघर्षों को लेकर लगातार चर्चा जारी है। तो दोस्तों ये थे आज के समाचार पत्रों के हवाले से समाचार सुर्खियां आकाशवाणी के अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। गुड इवनिंग ईटानगर में, और मैं आप सभी के साथ आरजे नूरी। दोस्तों समाचारों के इस सिलसिले के बाद थोड़ा सा संगीत हो जाए। संगीत के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे देश दुनिया के इतिहास के पन्नों से झलकियां।

दोस्तों कहते हैं ना कि तारीख सिर्फ कैलेंडर में नहीं बदलती, जो वो अपने साथ इतिहास की अनगिनत कहानियां भी लेकर आती हैं। तो गुड इवनिंग ईटानगर में, लीजिए खोलते हैं इतिहास के पन्ने और झांकते हैं आज के खास इतिहास के पन्नों को। तो दोस्तों 28 मई भी कुछ ऐसे ही यादगार पलों की गवा रही है। चलिए आज के इतिहास के सफर पर एक नजर डालते हैं। साल 1830 में अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने इंडियन रिमूवल एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। फिर आया साल 1937, जब दुनिया को मिली एक ऐसी कार कंपनी जिसका नाम आज भी हर सड़क पर चमकता है, वोक्सवैगन। 1961 में मानवाधिकारों की आवाज बनकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई, जिसने दुनिया भर में इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई को नई पहचान दी। और दोस्तों साल 1998 में पाकिस्तान ने चगाई परमाणु परीक्षण कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। और दोस्तों भारत में आज का दिन स्वतंत्र वीर सावरकर जयंती के रूप में भी याद किया जाता है। अब वक्त है आज की छोटी सी लेकिन बेहद काम की लाइफ टिप का। दोस्तों आपको फिर से याद दिला दो कि आरजे नूरी के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें, किस्से, कहानियां और जिंदगी बदलने वाली लाइफ टिप्स। दोस्तों कहते ना कि मनी विदाउट पर्पस इज जस्ट पेपर, लेट अस गिव इट डायरेक्शन। यानी कि अगर आपके पैसे को कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है, कोई सटीक जगह नहीं मिलता है, तो वो बर्बाद हो जाता है, वो कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। इसलिए कहते हैं पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस पैसे का कोई लक्ष्य ही ना हो तो वो धीरे धीरे बस खर्च बनकर रह जाता है। इसलिए जरूरी है अपने पैसों को मैप करना, यानी तय करना कि कितना पैसा सपनों के लिए, कितना परिवार की सुरक्षा के लिए और कितना अपने बेहतर भविष्य के लिए। याद रखिए छोटी छोटी सेविंग्स भी एक दिन बड़ी कॉन्फिडेंस में बदल जाती है, तो सेविंग्स शुरू करें। तो आज से सिर्फ पैसा मत कमाइए, उसे एक दिशा दीजिए, एक पर्पस दीजिए, ताकि आपका पैसा आपके सपनों की जर्नी का सबसे खूबसूरत साथी बन सके। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि पैसा कमाते तो है लेकिन गए कहां, इसलिए ट्रैकिंग करना यानी कि मैपिंग करना बहुत जरूरी है, सेविंग्स करना जरूरी है। पैसा कमाना अच्छी बात है लेकिन सेविंग्स करना उससे भी अच्छी बात। तो आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आज का ये टिप कैसा लगा हमें जरूर बताएगा। नंबर है 9436887808। चलिए पढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ।

दोस्तों, कार्यक्रम में इस खूबसूरत गीत को सुनते सुनते सुन लेते एक प्यारी सी छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसके बनाए घड़े हमेशा सुंदर और मजबूत होते थे। एक दिन किसी ने पूछा, आपके घड़े इतने खास क्यों होते हैं? तो कुम्हार मुस्कुराया और बोला, मैं मिट्टी को सिर्फ आकार नहीं देता, मैं हर घड़े में धैर्य, मेहनत और उम्मीद मिलाता हूँ। दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल मिट्टी की तरह है। अगर हम उसमें मेहनत, सकारात्मक सोच और धैर्य मिलाएं, तो वही जिंदगी एक खूबसूरत आकार ले लेती है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि धैर्य और निरंतर प्रयास से बनती है। तो जो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz अरुण FM पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से, ये जरूर ध्यान रखें कि सफलता हमें केवल प्रतिभा यानी कि टैलेंट से नहीं, उसमें धैर्य और निरंतर प्रयास भी बनाए रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको बता देने का वक्त हो चला है कि अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने का समय हो चला है, यानी कि थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में तथा नोक्टे डायलेक्ट में समाचार घिरे सीधे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से। तो समाचारों के बाद शाम के ठीक 5:05 पर हम फिर लौटेंगे आपके पसंदीदा संगीतमय कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के साथ। तब तक सुनते रहें ये खूबसूरत गीत।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफा की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जल मरुमध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमले से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस के आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गैंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुलिस को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डीप फेक आदि से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज राष्ट्र की असाधारण सेवा, अतुट अनुशासन और समर्पण के लिए देश को पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग और एसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के

साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पूर्ण मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियों पुनर्निर्धारित की गई है। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कीडी के शिवकुमार मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगी को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल मरुमध्य के पास एक दूसरे पर हमला किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल मरुमध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इजरायली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें जहरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमले में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए थे। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभिषेक देव रॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार अवैध घुसपैठियों से बंगाल को मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने पदभार ग्रहण करते ही घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए पता लगाओ हटाओ निवर्षित करो नीति लागू की। इस योजना के तहत घुसपैठियों को हिरासत में लिया जा रहा है और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। यह बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हाओ यांची ने किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमेनेज सम्मेलन का दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस को से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरीवाल

0: सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपने ही पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक और महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासत निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुष्ट निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुष्ट निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कार और यात्री तथा माल कार से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काका मिघाड़ा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पुल ए में रखा गया है। पुल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी टाइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। President Draupadi Murmu today urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with vulnerable sections, especially women, the poor and children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran Parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of the Sikkim police in maintaining law and order and in disaster management. Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. The announcement was made during the convocation ceremony of Sikkim University in Gangtok yesterday in the presence of President Murmu. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today assured resolution of all grievances of students regarding discrepancies and technical glitches in CBSE Class 12th examination evaluation process and its newly introduced on-screen marking OSM system. Mr. Pradhan said the OSM system is a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency. He was speaking to the media after holding a meeting with CBSE officials in New Delhi. The minister said that officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability is maintained at all levels. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul Adha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released.

Yeah.

आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आकाशवाणी के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफ एम पर। आप सुन रहे थे समाचार हिंदी अंग्रेजी तथा नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से। दोस्तों वक्त हो चला है आपको लिए चलू इवनिंग ड्राइव पर। जी हाँ, और आज हम बातें करेंगे बहुत ही खास। जैसे मैं समाचार सुन रही थी और नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम सुन रही थी, मेरे दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी और सबसे अहम बात ये कि मेरे बैंक बैलेंस से रिलेटेड थी और मेरा जो दिमाग है ना वो बार बार मेरे बैंक बैलेंस की तरफ ही बढ़ रहा था। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि सैलरी आती है, नोटिफिकेशन बजता है और दिल खुश हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद अकाउंट बैलेंस देखकर दिल पूछने लगता है कि सारे पैसे गए कहां। दोस्तों अगर ये कहानी आपकी भी लगती है तो आज के ये इवनिंग ड्राइव आपके लिए ही है। जी हाँ, मेरे लिए तो है ही है, आपके लिए भी जरूर है। तो शुरू करते हैं इवनिंग ड्राइव आकाशवाणी के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफ एम पर।

हम आपके साथ ड्राइव करते करते बातें करते हैं दिल से दिल की और सुनते हैं कई सारे किस्से कहानियां। लाइफ है एक्सर, कभी कभी तो हमें उलझा देने वाले कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स जहां हम कोशिश करते हैं कि हमारे सवालों का जवाब आप और हम मिलकर ढूंढ लें और साथ ही साथ दिल को हल्का करने के लिए सुन लेते हैं बेहतरीन से बेहतरीन गीत भी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में यही आपको बता दिया कि मेरे दिमाग में आज कई सारी चीजें चल रही थी और सबसे अहम ये बात कि मेरे बैंक बैलेंस ऐसे कैसे गायब हो जाते, यानी कि कैसे खत्म हो जाते मेरे पैसे। जब पहली दफाज मेरे सैलरी का नोटिफिकेशन जब आता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया में मैं सबसे धनवान हूं, लेकिन कुछ ही दिनों में सारे पैसे खत्म। और मुझे कभी कभी तो ये भी पता नहीं चलता कि खर्च कहां कर दिए। अगर बात आपकी भी है तो शायद ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो आज इसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हर घर, हर नौकरी, हर सपने और हर फ्यूचर से जुड़ा है। जी हाँ, फाइनेंशियल जीपीएस फ्रॉम क्योस टू कंट्रोल। दोस्तों, जिंदगी की सड़क पर अगर डायरेक्शन ना हो तो इंसान भटक जाता है। जैसे इस वक्त अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आप भटक जाए, आपका कोई डायरेक्शन ना हो तो आपकी गाड़ी भटक सकती है और आपका सफर बेमतलब हो सकता है। और बिल्कुल यही बात हमारे पैसों पर भी लागू होती है, क्योंकि जब तक पैसे का सही डायरेक्शन नहीं होगा तब तक कमाई कितनी भी हो कन्फ्यूजन बना ही रहेगा। इसलिए प्रसिद्ध फाइनेंशियल एक्सपर्ट डेव रामसे ने कहा था कि अ बजट इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग वेयर इट वेंट। का मतलब है कि आपका जो बजट है ना, आपको बताते रहता है कि आपको जाना कहाँ है, यानी कि आपको खर्च कहाँ करना है, कैसे करना है, बजाय कि आप कंफ्यूज रहे कि मेरे पैसे गए कहाँ, मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे तो आए थे फिर मुझे पता चले बिना गए कहां। तो यानी बजट सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि आपके पैसों का जीपीएस है। अगर आपके फोन में जीपीएस सही तरीके से काम करता है तो आपका सफर का डायरेक्शन सही जाता है। तो इसी तरह से अगर आपका फाइनेंशियल जीपीएस सही तरीके से चलता है तो आपका फाइनेंशियल इश्यूज भी सॉल्व हो सकते हैं। तो आज की हमारी ये खास बातचीत प्रेरित है एक ऐसे किताब जिसका नाम है डियर वीमेन वी नीड टू टॉक मनी। वैसे इस किताब में महिलाओं को एड्रेस किया गया है, लेकिन ये हर इंसान के लिए लागू होता है, यानी कि इट इज रेलेवेंट टू एवरी वन हुएवर इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ। तो ये नेशनल फाइनेंशियल ओलंपियड ने तैयार किया है और यह किताब हमें सिखाती है कि मनी मैनेजमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होता बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में सुकून और स्टेबिलिटी चाहता है। अगर आप भी चाहते हो स्टेबिलिटी और सुकून पैसों से रिलेटेड, तो ये जो डिस्कशन है ना उसको जरूर सुनना चाहिए। आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर और इस वक्त मैं हूँ आप सबके साथ रेडियो साथी आरजे नूरी। मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी सीखना शुरू किया है। तो मैंने सोचा कि मैंने जो सीखा है वो अपने जितने भी साथी हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं उनके साथ क्यों ना बांटूं। चलिए, बातें तो आगे चलती ही रहेगी, उससे पहले सुन लेते हैं सुकून भरा प्यारा सा गीत।

दोस्तों जानी है इवनिंग ड्राइव कार्यक्रम मेरे साथ यानी आप सभी के रेडियो साथ ही आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे अभी तो उम्र बड़ी है सेविंग करने की, थोड़ा एंजॉय भी तो कर लेना चाहिए। ईएमआई तो चल ही रहा है, चलता रहेगा, वो तो हम मैनेज कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी सोचा था कि जिंदगी पड़ी है, सेविंग्स कर लेंगे, ईएमआई हम मैनेज कर लेंगे, लोन्स ले लेना या अनचाही चीजें खरीद लेना, इम्पल्सिव शॉपिंग जिसे कहते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेना, इस तरह के कई सारे एक्टिविटीज हम कर ही लेते हैं। हम इंसान हैं भाई, हम जितना भी डिसिप्लिन्ड हैं अपने आप को समझ लें, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी गलतियां कर ही लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे खर्च जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में बदलने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता। पता तब चलता है जब पानी सर से ऊपर चल जाता है। ऑन सेल, इम्पल्सिव शॉपिंग और बस आज के लिए वाला खर्च कभी कभी फ्यूचर की शांति को छीन लेता है। आपने भी जरूर किया होगा, मैंने भी किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल कंट्रोल पाना मुश्किल नहीं है। जिस तरह से इस वक्त आप ड्राइव कर रहे हो, कोई अचानक कोई मुश्किल आ जाए तो आप ब्रेक लगा लेते हो और आपको बचा लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक किसी बड़ी दुर्घटना से आपको बचा लेते हैं। वैसे ही फाइनेंशियल कंट्रोल पाना भी उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। बस शुरुआत करनी होती है कुछ छोटी आदतों से। जिस तरह से हर महीने थोड़ा सा सेविंग शुरू कीजिए, जरूरत और इच्छा में फर्क यानी कि नीड और वांट्स में आप डिफाइन करना और उसको समझना और उसके फर्क को समझना शुरू कर दीजिए। सच में जो चीज आपको जरूरत है और वो चीज जो आप चाहते हैं उसमें फर्क करना सीखिए, और जो जरूरत है उसे खरीदे और जो चाहते हैं उसे थोड़ा सा बैकसीट दे दीजिए। और दोस्तों इमरजेंसी फंड और खर्च लिखने की आदत डालिए, ये बहुत जरूरी है। मैंने शुरू कर दिया है, अगर आपको लगता है कि आपको भी जरूरत है शुरू करने की तो जरूर शुरू कीजिए। छोटी छोटी सेविंग्स यानी कि हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स कीजिए, उसे एसआईपी में डालिए या सेविंग्स कीजिए, और जरूरत और इच्छा यानी कि नीड और वांट्स में फर्क जरूर कीजिए। दोस्तों किताब डियर वुमेन वी नीड टू टॉक मनी, जिसे तैयार किया है नेशनल फाइनेंशियल ओलंपियड ने, ये एड्रेस तो महिलाओं को करता है लेकिन ये जो टॉपिक है ना वो हर किसी के लिए। दोस्तों किताब की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसे नहीं देती बल्कि कॉन्फिडेंस भी देती है। जब इंसान अपने पैसों के फैसले खुद समझदारी से लेने लगता है तो जिंदगी में डर कम और आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस ज्यादा लगने लगता है। और अब वक्त है एक और खूबसूरत गीत का, क्योंकि पैसों की बातें करते करते हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैंने तो कम बचाया, मैंने तो खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया, मैंने तो कभी ये फर्क नहीं सोचा कि नीड्स और वांट्स का मतलब क्या होता है, मैंने कभी छोटी छोटी सेविंग्स से बड़ी सेविंग्स के बारे में मैंने सोचा भी नहीं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना। चलिए स्ट्रेस को कम कर दें एक प्यारा सा गीत सुनकर। यह आकाशवाणी का रन एफ 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और मैं हूँ रेडियो साथी, आप सबके स्ट्रेस बढ़ाने नहीं बल्कि स्ट्रेस कम करने के लिए आई हूँ। कार्यक्रम चल रहा है इवनिंग ड्राइव।

फाइनेंशियल इमरजेंसी और फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करते करते हम स्ट्रेस में आ गए थे, लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद उम्मीद करती हूँ कि आप स्ट्रेस से बाहर आ गए होंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल या फाइनेंशियल क्योस टू कंट्रोल की बातों को जारी रखते हैं। मैं हूँ आप सबकी रेडियो साथी आरजे नूरी। मैं पहले बता देती हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी विक्टिम हूँ जिसने कभी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की। हम करियर की प्लानिंग करते हैं ना, आपने भी किया होगा, और आप कहीं आपने की हुई प्लानिंग पर आज करियर के किसी ऊंचे मुकाम पर होंगी। ट्रैवलिंग की प्लानिंग भी करते हैं, और इस वक्त अगर कहीं जाने के फिराक में हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने ये ट्रैवलिंग भी प्लान की होगी। पिकनिक भी प्लान करते हैं, न्यू ईयर की पार्टी की भी प्लान करते हैं, लेकिन प्लान नहीं करते हैं तो वो एक ही चीज है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग को हम ताल देते हैं। अरे पैसा तो जो है ना, वो आनी जानी चीज है, वो तो हाथों का मैल है, वो तो आता है जाता है। हम कभी प्लान नहीं करते, हर चीज जिंदगी में हम प्लान करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग को हम ताल देते हैं और उसे बैक सीट दे देते हैं। दोस्तों, जबकि सच्चाई ये है कि अनप्लान मनी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, और हम अपने आप से यही सवाल करते फिरते हैं कि मेरे पैसे गए कहां। कमाते इतना है, मेहनत इतना करते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस खाली होते वक्त नहीं लगता। इसलिए आज एक बात गांठ बांध लीजिए, अनप्लान मनी खत्म हो जाता है बहुत ही जल्दी, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और प्लान मनी धीरे धीरे सपनों को सच बनाता है। एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूं। एक छोटा सा लड़का था, 19-20 साल का लड़का, किसी बैंक के बाहर चाय का जो टपरी है वो चलाता था। एक दिन एक नौजवान सा लड़का यानी कि ऑफिसर आया और उसके वहां चाय पिया। वो रोज आता था, चाय पीता था। तो महीने भर के बाद उस अफसर ने उस लड़के को पूछा कि भाई आप कितना बचा लेते हो। तो उस लड़के ने जवाब दिया, सर जी कहां बचता है, मुश्किल से 50-60 रुपए बच जाता है। तो उस दिन तो वो चाय पीकर चला गया। तो अगले दिन उस लड़के के पास चाय पीने के लिए जब आया, तो वो बैंक का अफसर ने उसे एक बात बताई कि मेरे भाई, तुम्हारे पास जो 50-60 रुपए बचते हैं ना, आज मैं तुम्हें एक वॉलेट दे रहा हूं, उस वॉलेट में हर दिन 10 रुपए बचा कर रखना, महीने के आखिरी दिन मैं आ जाऊंगा। लड़के ने किया, हर रोज जो 50-60-40 रुपए जो भी बचते थे उसमें से 10 रुपए निकालकर उस वॉलेट में डाल देता था जिसे बैंक के अफसर ने दिया था। तो महीने के आखिर में आकर उसने कहा कि चलिए वो वॉलेट मुझे दे दो। लड़के ने बड़ी हैरानी से उस अफसर की तरफ देखा, तो उसने कहा, भाई साहब ये आपके पैसे हैं, सुरक्षित है। और उसने उसके नाम से म्यूचुअल फंड में SIP किया, और धीरे धीरे उस लड़के की आदत बन गई। एक साल में उसको यह आदत लग गई कि हर रोज उसे 10 रुपए बचाना है और उस अफसर को दे देना है। ऐसा करते करते उस लड़के की शादी कर ली, बच्चे हो गए, और जब उसके बेटे की पढ़ाई की बारी आई तो वह हैरान था कि वो अपनी उस बच्चे को डॉक्टर बनाएगा कैसे। तभी उस अफसर की यानी कि बैंक अफसर की याद आई, और उन्होंने कहा कि सर जी मैंने आपने जिस तरह से कहा था, मैंने वो पैसे बचाए और हर बार मैंने आपको दिया, और उसी तरह से आप जब बैंक से ट्रांसफर होकर चले गए तो मैंने वो जारी रखा था, तो आज मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है और उसे पढ़ाई करने के लिए भेजना है, तो क्या मैं उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो उसने बिल्कुल उसने कहा। और जब वो गया बैंक, तो 10 रुपए हर दिन बचाकर जिस बैंक अफसर को देता था उसने उसे निवेश किया, और अब वो लाखों का मालिक बन गया था। तो दोस्तों, सेविंग्स भले ही छोटी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्लांट मनी जो है धीरे धीरे सपनों को सच करता है। ये सच्ची कहानी पर आधारित है। आप भी कोशिश कीजिए, आपको लगता होगा कि मेरे पास बचते ही कितने हैं, उसमें से थोड़े से बचा लीजिए और उसे सेविंग्स में डालना शुरू कीजिए।
तो दोस्तों चाहे सपना छोटा हो कि कोई छोटी सी बाइक हो, छोटा सा घर हो, बच्चों की पढ़ाई या अपने पेरेंट्स के लिए सिक्योरिटी, हर सपना थोड़ी फाइनेंशियल डिसिप्लिन मांगता है। इसलिए आज से शुरू कर दीजिए थोड़ी सी डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब खुशियां छोड़ देना नहीं, बल्कि फ्यूचर की खुशियों को सुरक्षित करना है। ऐसा नहीं है कि 50 रुपए बचते हैं तो 50 के 50 आप उसे सेविंग्स में डाल दीजिए, ऐसा नहीं। उस सेविंग्स में से, यानी कि जो बचता है उसमें से थोड़ी सी निकाल कर आप बचत शुरू कीजिए, रिजल्ट अच्छा जरूर होगा। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कार्यक्रम है इवनिंग ड्राइव, और ड्राइव करते करते हम कहाँ पहुंच गए। अगर फिर से आप स्ट्रेस में आ गए हो कि मुझसे तो ये नहीं होगा, तो चलिए थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करते हैं इस गीत को सुनकर।

तो दोस्तों मैं बात कर रही थी सपनों की। जी हाँ दोस्तों, हर छोटे सपने की, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, डिसिप्लिन मांगता है। और दोस्तों आज अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं अपने पैसों को डायरेक्शन दे रहा हूं या सिर्फ फ्लो के साथ बह रहा हूं? क्योंकि जिंदगी की तरह पैसों का सफर भी बिना जीपीएस के अक्सर गलत मोड़ ले लेता है। तो दोस्तों याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हर छोटा समझदार कदम आपको क्योस से लेकर और क्योस से निकालकर कंट्रोल की तरफ जरूर ले जाता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे इजाजत कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव से। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित चलिए और मुस्कुराते रहिए, और थोड़ी सी फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर ध्यान दीजिए और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सुरक्षित रखिए। दोस्तों ये आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और हमारी तीसरी प्रसारण सभा में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव और थोड़ी सी जीपीएस फाइनेंशियल की। दोस्तों वक्त हो चला है कार्यक्रम शाम की महफिल का। शाम की महफिल में आज हम सुनेंगे बैक टू बैक एक बेहद ही खूबसूरत फिल्म तेरे मेरे सपने के नगमे बैक टू बैक। बने रहिए आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे थे हिंदी फिल्मी गाने बैक टू बैक आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में यानी कि 6:30 हो रहे आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। हम फिर से लौट कर आएंगे 6:35 पर आज के कलाकार कार्यक्रम के साथ। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, आप सुनते रहिए और अपने मन को ऐसे ही खुश रखिए।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आदि श्रोताओं के समाचार के बाद। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और इस वक्त हमारे घड़ी के अनुसार 6:37 हो रहे हैं और हम चले हैं आप सबको लिए चलने का अगले कार्यक्रम की तरफ। और अगला कार्यक्रम में बताऊं आज के कलाकार। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में यानी कि हमारी जिंदगी में, हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी में फिल्मी कलाकारों के लिए बहुत अहम जगह है। उनसे सीखते हैं, उनको देखकर हम खुशी मनाते हैं और उनके गानों पर नाचकर हम मौज मस्ती करते हैं। हिंदी सिनेमा का असर इतना है ना कि हम उन पर्दे पर जो भी देखते हैं उसके साथ हम रिलेट करने लगते हैं और सितारे हमारे लिए एक तरह से आइडल बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के कलाकार में हम ऐसे चेहरे की बात करेंगे। यूं तो हम ये कहते हैं कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी चेहरे होते हैं जो सिर्फ अपनी अदाकारी से नहीं बल्कि अपनी सादगी, मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी से भी लोगों के दिलों में बस जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कलाकार है अपने प्यारे डिम्पल स्माइल और दमदार अभिनय के लिए बहुत बहुत ही मशहूर है और आज भी भले ही वो फिल्मों से दूर है लेकिन हमारे दिलों में है। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ प्रीति जिंटा की। जैसा नाम वैसा ही चेहरा, नाम प्रीति और सच में बहुत प्रीति। दोस्तों, 31 जनवरी को 1975 को हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों वाले शहर शिमला में जन्मी प्रीति जिंटा का जीवन कभी आसान नहीं रहा। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें टूटने नहीं दिया बल्कि और मजबूत बना दिया। दोस्तों, उन्होंने मनोविज्ञान में पढ़ाई की और शायद यही वजह है कि उनके निभाए किरदारों में भावनाओं की सच्चाई साफ दिखती है और हर कैरेक्टर हमें ऐसा लगता है कि वो हम है, यानी कि हम रिलेट कर पाते हैं। ऐसे अदाकारा है प्रीति जिंटा। दोस्तों, आज के कलाकार में हम जब बातें कर रहे हैं प्रीति जिंटा की तो उन्हीं की उनके ही फिल्मों से कुछ गीत भी सुनेंगे। चलिए सुनते हैं ये पहला गीत।

दोस्तों, दुनिया ने प्रीति जिंटा को पहली बार लिरिल के एडवर्टाइजमेंट में देखा, यानी कि उसे एड में देखकर लोग पागल हो गए। और फिल्मों में उन्होंने 1998 में दिल से फिल्म से रखा बॉलीवुड में कदम। पहली ही फिल्म में उनकी मासूमियत और आत्मविश्वास ने दर्शकों का दिल जीत लिया और इसके बाद सोल्जर ने उन्हें एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। दोस्तों, प्रीति जिंटा सिर्फ ग्लैमरस भूमिकाओं तक सीमित नहीं रही, उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार चुने जो समाज को कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। शुरुआती दौर में ही उन्होंने क्या कहना में एक अविवाहित माँ का किरदार निभाकर उन्होंने उस दौर में एक साहसिक विषय को बड़े पर्दे पर बेहद संवेदनशील तरीके से पेश किया और उसके बाद तो जैसे सफल फिल्मों की कतार लग गई। दिल चाहता है, कोई मिल गया, कल हो ना हो, वीर सारा, सलाम नमस्ते, कभी अलविदा ना कहना, हर फिल्म में उनका अंदाज अलग, हर किरदार में एक नई चमक। और कल हो ना हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड्स भी मिला। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं प्रीति जिंटा की, तो उसकी प्रीति प्रीति सॉन्ग्स आप तक पहुंचाना मेरा काम है। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

जी नूरी के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर आज के कलाकार और आज के कलाकार डिंपल वाली क्यूट स्माइल वाली बहुत ही खूबसूरत प्रीति जिंटा। दोस्तों प्रीति जिंटा ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। 2008 में उन्होंने आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की सहमालकिन बनकर ये साबित कर दिया कि एक महिला हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती है, यानी कि वो लीडर बन सकती है। वो महिला सशक्तिकरण, बच्चों के अधिकार और सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रहती है। दोस्तों निजी जीवन की बात करें तो 2016 में उन्होंने जीन गुडन नो से शादी की और आज उनके परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। दोस्तों प्रीति जिंटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, अगर मुस्कान और हौसला साथ हो तो हर काम हासिल किया जा सकता है। तो आइए आज इस खास कलाकार को समर्पित करते हैं उनकी एक और यादगार फिल्म का ये खूबसूरत गीत। दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं, आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर।

दोस्तों आज के कलाकार कार्यक्रम में हमने जाना उस अभिनेत्री की कहानी जिसने अपनी मुस्कान, मेहनत और आत्मविश्वास से लाखों दिलों में जगह बनाई और वो भी खास जगह बनाई। प्रीति जिंदा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थॉट्स और हौसले के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उम्मीद है कि आज की यह पेशकश आपको पसंद आई होगी और प्रीति जिंदा से जुड़ी ये बातें आपके दिल को छू गई होंगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई कलाकार, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz पर हर शाम 6:35 से लेकर 7:00। तो दोस्तों आपको ये बताने का है कि 7:00 ही आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार। तब तक सुनिए एक और प्रीति जिंता सॉन्ग।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: आकाशवाणी के ईटानगर के केंद्र से सुन रहे थे आप निशी श्रोताओं का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और आपका फिर से स्वागत करते हैं स्टूडियो।

जो हमें सुनते हैं उनके साथ बातों ही बातों में, गानों ही गीत और गानों के बीच कई सारी बातें कर ली। और कभी कभी हम हिंदी सिनेमा की जब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपको लिए चलूंगी हिंदी सिनेमा के गानों के सफर में, तो हिंदी सिनेमा केवल मनोरंजन का ही जरिया नहीं है बल्कि कई सारी चीजों को हम सीखते हैं। कई बार तो हमें लाइफ लेसन एक मूवी में मिल जाती है। इसलिए कहते ना कि सिर्फ चलती फिरती तस्वीरों का नाम नहीं है हिंदी सिनेमा, ये वो जादू है जो कभी हमें हंसाता है, कभी रुलाता है, तो कभी कभी जिंदगी जीने का नया नजरिया भी दे जाता है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा यानी वो दुनिया जहां राज कपूर की मासूमियत, अमिताभ बच्चन का गुस्सा, शाहरुख खान की मोहब्बत और आमिर खान की सोच हमारी अपनी कहानियों का हिस्सा बन जाती है। अगर सोचे तो दोस्तों कितनी अजीब बात है ना कि एक फिल्म का डायलॉग बरसों तक लोगों की जुबान पर रहता है, एक गीत पूरी पीढ़ी की याद बन जाता है और एक किरदार लाखों लोगों की सोच बदल देता है। दोस्तों, जब राजेश खन्ना ने यह कहा था कि बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, एक ही लाइन में उसने जिंदगी का फिलोसफी सबको पढ़ा दिया। जिंदगी जीना जीने का नाम है। जिंदगी हमारी कितनी लंबी है कितनी छोटी है वो मायने नहीं रखती है, लेकिन जो मिला है उसे कितने बड़े ढंग से, कितने मजेदार ढंग से और कितने मीनिंगफुली हम जीते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजेश खन्ना ने एक मूवी में एक ही लाइन में हमें सिखा दिया। और साथ ही साथ अगर हम कोई भी गीत सुनते हैं तो किसी रोमांटिक सॉन्ग के साथ हम ऐसे झूम उठते हैं जैसे कि वो सॉन्ग हमारी जिंदगी के लिए, हमारे लिए ही लिखा गया हो। होता है ना ऐसा? चलिए, इस गाने से आपको अगर ऐसा महसूस हुआ है तो आज का ये शो सक्सेसफुल है। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

0: से ये चेहरा
1: जारे चमनी का पाइन पाता ये कौन हल गोलन जिगन कुबा होग लगा अब डिप्टी कमिश्नर ने इटा नगर ला नहा लगन के एसपी पुलिस तो लोग हम कम मोदम बोन यम दम मुहम आतल सिजा को लगा दोनिया तका आर ने ये जाकम हो बोनम बिनम तमानिन अन बदो बानी लोकम हमे काग ताग मम दुको मुह बोलो मुहम आतका हल कम गौतम तमिल जिगन कुबा हल पुए वे पादो इटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ताच होगा मोलिपुई को दगो गोलिन गम लंपिया बेड एनएच 415 हाईवे हो अदिन ओ इज अहमर पुल दोनिया बो अन्यो अन्यो बो दुकान हदम रुब आले लोली मोद उरु सोगा सो मे बुलम पुन्या बुन्या को का हल बेलाय मे बुलम गौतम तमे जिग नको हो माय कम लमतांग गाडी गोरा हाट को दोमा अछे अहे अल जादो हल बेलाय अन्यो अन्यो बो दुकान हदम नि व्याम पान्यात को का हल पुई दगो गो आईएमसी ताच होगा गोलिन जिग नको हल पुए बेपादो सिम गनसि पुए हते को आकाशवाणी अरुण एफ एम तालदोदुदन सको के मूल का जो बेमिन तंगम अल्बो तो तुम हरा तत्कुश का सिजा बेमिन लक निग सिनाम हल दन तो कोई अलम गोरा बेनम अक्तु

सिनेमा का असर सिर्फ थिएटर तक ही सीमित नहीं रहता, ये हमारे पहनावे और हमारी बातचीत का अंदाज बदल देता है और कभी कभी तो प्यार जताने के तरीके भी बदल देते हैं। दोस्तों, एक दौर था जब लोग राजेश खन्ना जैसे मुस्कान चाहते थे और माधुरी दीक्षित जैसे हेयर स्टाइल चाहते थे, और आज भी हिंदी सिनेमा के जितने भी स्टार्स हैं उसको कॉपी करना आज के जनरेशन के बच्चों तक चलता आ रहा है। और आज भी हर नौजवान अमिताभ बच्चन की तरह एंग्री यंग मैन बनना चाहता है। आज के नौजवानों से पूछिए कि हिंदी सिनेमा का मतलब क्या है, तो वो वही कहेंगे अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती या गोविंदा। ऐसा नहीं है कि आज के जो यंग एक्टर्स है उनका असर नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन पुराने जमाने के, पुराने दौर के जो हमारे सितारे थे ना, उनके अंदाज का ही बात अलग है। और आज भी जब कोई कहता है कि सेनोरिता बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है और हम रिलेट कर पाते हैं। दोस्तों, सिनेमा ने हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया बल्कि समाज के आईने की तरह हमें हमारी सच्चाइयां भी दिखाई है। और हर गाने ने तो ऐसा जादू बिखेरा है कि हर गाना हमारा ही लगता है, जैसे हमारे लिए ही लिखा गया हो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ। चलिए एक और गीत

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual gravity engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: दिल से दिल तक बात पहुँची।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं मेरे साथ आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर हिंदी फिल्मी गाने। दोस्तों, हिंदी फिल्मी गीतों की बात ही कुछ और है, क्योंकि हमारे यहाँ हर एहसास यानी कि हर इमोशंस, हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गीत जरूर लिखा जाता है। मोहब्बत हो तो उसके लिए भी गीत है, जुदाई हो तो उसकी तो और बहुत ज्यादा गीत है, दोस्ती हो तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन गीत हिंदी सिनेमा ने हमें दिए हैं, और खुशियां हो तो फिर पूरा बॉलीवुड साथ गुनगुनाने लगता है। शायद यही वजह है कि हमारी जिंदगी के कई पल किसी न किसी फिल्मी गीत से जुड़ जाते हैं। बारिश में पुराने गीत याद आने लगते हैं तो सफर में रोमांटिक ढूंढे, और दिल टूटे तो साहिर, गुलजार और आनंद बख्शी के शब्द मरहम बन जाते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी फिल्मी गानों में अगला गीत आपके कौन से सिचुएशन, कौन से इमोशंस के साथ जोड़ते हैं। सुनिए और बताइएगा जरूर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर पर 9436887808। हाँ जी, यही वो नंबर है जिस नंबर पर आप लिख भेजते हैं अपना मनपसंद गीत रेडियो ऑन डिमांड पर। साथ ही साथ हमारे साथ रेडियो ऑन डिमांड के साथ साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिख सकते हैं कि हम कहाँ पे इम्प्रूव करें और कहाँ पे कुछ चीजों को जोड़ें, क्योंकि श्रोता दोस्तों, आप सभी की वजह से हमारा यह चैनल जिंदा है। आप हमारे लाइफलाइन हो तो लाइफलाइन से पूछना बनता है कि हम कहाँ इम्प्रूव करें और कौन सी चीजों को जोड़ें जरूर। तो चलिए, अगला गीत आपकी जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा या कौन सा किस्सा बताता है, सुनते हैं।

0: जी हाँ, बिल्कुल सच कहते हैं। हिंदी सिनेमा और उनके जितने भी गाने हैं वो हमारे रग रग में समाया हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि हम उसके बिना अधूरी हैं। और अधूरे इसलिए क्योंकि हर पल के लिए, हर इमोशन के लिए हमारे पास गाने हैं। और कभी कभार जब हम शब्दों से बयान नहीं कर पाते, वो सारी बातें हम गानों के माध्यम से कर जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं आकाशवाणी का RNFM 103.1 MHz एक ऐसा चैनल जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आरजे नूरी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी सिनेमा का जादू ना शायद इसलिए भी खत्म नहीं होता क्योंकि इसमें हम सबकी छोटी छोटी कहानियां छुपी होती है। कहीं माँ का प्यार, कहीं दोस्ती की गर्माहट, तो कहीं अधूरी मोहब्बत, तो कहीं सपनों को पूरा करने की जिद। दोस्तों, सिनेमा हमें मनोरंजन तो देता ही है, साथ ही हमें सपने देखना सिखाता है, गिरकर फिर उठना सिखाता है। और कभी कभी बस दो घंटे के लिए ही सही हमें हमारी परेशानियों से दूर ले जाता है। तो आइए दोस्तों, ऐसी ही किसी जादुई एहसास के साथ सुनते हैं एक और बेहद ही खूबसूरत नगमा। लेकिन लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ले चलूंगी उस खूबसूरत गीत की ओर।
1: Performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: तो वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी के RNFM 103.1 MHz पर कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गानों में। ब्रेक से पहले मैंने ये ही कहा था कि हिंदी फिल्मी गानों का जादू इसलिए भी खत्म नहीं होता क्योंकि हर गीत, हर फिल्म की कहानी हमें कहीं ना कहीं रिलेट करता है और हमें कहीं ना कहीं सपने देखना सिखाता है और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे गम गानों के साथ मिट जाता है। इस वक्त अगर मेरे साथ सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने, तो अगर आपके मन में भी कोई दुविधा है, कोई गम है, कोई दुख है, या किसी से बिछड़ने का बहुत ही गहरा सदमा लगा है, तो शायद, या अपनी माँ के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है और अगर आप माँ से दूर कहीं खो गए हो ऐसा लगता है, तो जरूर ये गाना आपको फिर से मरहम लगा देगा आपके गम पर और आपके दुख पर।

दोस्तों, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने और हिंदी सिनेमा के इन्फ्लुएंस की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, हिंदी सिनेमा सिर्फ भारत की सीमाओं में सिमटी हुई दुनिया नहीं है, ये वो ताकत है जो भारत की संस्कृति, भावनाएं और रंगों को दुनिया के हर कोने तक लेकर जाती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हिंदी सिनेमा असल में भारत का एक कल्चरल एम्बेसडर है, शायद आप भी मानते होंगे, यानी एक ऐसा दूत जो बिना शब्दों के भी हमारी पहचान दुनिया से जोड़ देता है। दोस्तों, जब बात अंतर्राष्ट्रीय पहचान की होती है ना, तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, राज कपूर। सोवियत संघ से लेकर मध्य एशिया तक राज कपूर को लोग सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की आत्मा की तरह पहचानते थे। उनकी फिल्मों में सादगी थी, भावनाएं थी और एक ऐसी मासूमियत जो भाषा की सीमाओं को भी पार कर जाती थी। और ऐसे में एक गीत बहुत बहुत ही फेमस है जिसे आज आप तक जरूर पहुंचाना चाहती हूं। लीजिए सुनिए राज कपूर का ये आइकॉनिक सॉन्ग जो भारत की सीमाओं को पार कर, लांग कर विदेशों में भी बहुत सुना गया।

फिर आया वो दौर जब सिनेमा की आवाज और किरदार बदल गए। अमिताभ बच्चन, एक नाम जो एंग्री यंग मैन की पहचान बन गया, उनकी आवाज सिर्फ संवाद नहीं थी, एक एनर्जी थी, एक आंदोलन था। दुनिया भर में जहां भी भारतीय फिल्में पहुंची, वहां अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार नहीं बल्कि भारत की नई सोच के प्रतीक बन गए। सदी के महानायक कहा जाता है और नई जनरेशन, पुराने जनरेशन तो पुरानी जनरेशन, नए जनरेशन के लोग भी अमिताभ बच्चन को नहीं पहचानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा जादू है हिंदी सिनेमा का। आइए चलिए हिंदी सिनेमा के फिल्मी सफर यानी कि हिंदी फिल्मी गानों के सफर में सुनते हैं ये अगला आइकॉनिक सॉन्ग।

0: 420.
1: Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves.
2: दोस्तों आज जब हम कहते हैं कि हिंदी सिनेमा भारत का सांस्कृतिक राजदूत है तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जहां राज कपूर की सादगी से लेकर अमिताभ की शक्ति और शाहरुख सलमान आमिर की ग्लोबल चमक तक भारत ने दुनिया के दिलों में अपनी जगह बनाई है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ आइए सुनते बॉलीवुड का एक और यादगार गीत

और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूं कि स्टूडियो की घड़ी की सुइयां ये कहती है कि हिंदी सिन के गीतों का सफर यहीं पे समाप्त होता है और वक्त हो चला है अरुणाचली गीतों का सफर अपना गेट का

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अता। दोस्तों, आजकल हम अपने ऊपर काम करने से ज्यादा कंपैरिजन में वक्त जाया करते हैं। मैं ये नहीं बन पाया या बन पाई, मेरे दोस्त के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। न जाने कितनी बातें सोचकर हम अपने दिमाग पे बहुत बड़ा सा बोझ डाल के बैठ जाते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगी, ये सारी बातें ना वक्त जाया करने से ज्यादा कुछ नहीं है। किसी को देखकर खुद को उनके साथ कंपेयर करके क्यों दिल को छोटा करना है, बल्कि अपने हिस्से का मेहनत करते रहना है और खुद से बनाई इस जिंदगी को शान से जीना है। कहते हैं ना, कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामी दिल में मायूस पैदा करती है। जी हाँ श्रोताओं, इतनी सारी भूमिका मैं यूं ही नहीं बांध रही हूँ। कार्यक्रम का पहला गीत मायूसी से भरा है, तो सोचा कि आपको पहले ही आगाह कर दूं। तागिन गीत है तारा कोदा की आवाज में, चलिए आनंद लेते हैं।

श्रोता सुन रहे थे दम्पी जिलेन की आवाज में गालो गीत। आपने ट्यून किया है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज और कार्यक्रम चल रहा है अपना गीत। अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें ईटानगर से बाहर भी सुन सकते हैं। बस आपको अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करना है न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज यानी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर क्लिक करना है और इसी तरह आप हमें सुन सकते हैं देश के किसी भी कोने से। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अजाती मीमी की आवाज में सुनते हैं ईदू गीत।

दोस्तों, अगर देखा जाए तो कई उतार चढ़ाव, खुशी गम, अपने पराये, सफलता असफलता, इन सभी चीजों के बाद अंत में मंजिल जो है ना, मन की या आत्मा की शांति ही होती है। और एक बात बताओ आपको, ये जो मन है ना, इसको शांत करना भी एक कला है जो अक्सर लोगों को नहीं आती। जी हाँ, तो इस कार्यक्रम में आपको मैं बताने वाली हूँ वो एक शब्द, एक ही शब्द लगते हैं इस मन को शांत करने के लिए। ना ना, पहेलियां नहीं बुझा रही हूँ, बता रही हूँ कि ये जो स्वीकार शब्द है, स्वीकार यानी कि एक्सेप्टेंस, यही वो एक शब्द है, वो मंत्र है जो हमें शांति देता है। अगर हम खुद को, आसपास की चीजों को या हालातों को स्वीकारते हैं तो इस मन को यहाँ वहाँ दौड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मगर ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्याय को स्वीकार करें, अत्याचार को स्वीकार करें, बिल्कुल भी नहीं। और हालातों को स्वीकार

श्रोता तकबुल लेगो की आवाज में आप सुन रहे थे आदि गीत, और इसी आदि गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आशा है आपको कार्यक्रम पसंद आए होंगे, और इसी आशा के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

तो श्रोता दोस्तों, पाश्चात्य संगीत की दुनिया से निकलकर अब चलने को तैयार है कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों की तरफ, जहां हम सुनेंगे सुनहरे दौर के उन हसीन नगमों को जो यादों के झरोखे में कहीं ठहरा हुआ है। हम आज उन गलियों में जाकर सुनेंगे पुराने मगर सदाबहार नगमे।

अरुण एफएम के प्यारे श्रोता दोस्तों, सुनहरे गीतों के साथ यानी कि इस आखिरी पेशकश के साथ ही अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज का ये यादगार और खूबसूरत सफर यही थमता है। कल फिर मिलेंगे इसे सुनहरे गीतों, दिलकश यादों और देश दुनिया के ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आज के इस खूबसूरत सफर को यादगार बनाने में साथ देने वाले प्रसारण अधिकारी गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम जी और मुझे यानी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी को दीजिए इजाजत। दोस्तों, लेकिन ये कहीं रुकेगा नहीं क्योंकि एफएम गोल्ड के कार्यक्रम यूं ही लगातार जारी रहेंगे। तो आप बने रहिए आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। लेकिन हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ ही आप सभी श्रोताओं को शुभरात्रि।

0: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
0: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
1: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, जिस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है या उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
1: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पे सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
0: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
1: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो ये है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके थोड़ा नींबू डाल करके

0: जो है शिकंजी टाइप बना करके आप ले, या ओआरएस का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ओआरएस का घोल बना करके पानी ले। इसमें नमक लेना जरूरी होता है, क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें, क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
0: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा, जैसे मैंने बताया, नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं, और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें, जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है। तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी, दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकले। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाए, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए। धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाए तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाए। अगर धूप है उस समय तो छतरी का ले, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर

0: क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के लोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आए, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी, और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए। और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जा करके डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
0: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें, ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ रहता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
0: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें, तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटे नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं, तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोताओं इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide. Insights. The This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist, and Ramya, anchor.
3: Good evening, listeners. Welcome to the weekly program Insights. Today, we will be discussing about the Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. To shed more light on this, we have with us senior journalist from Assam, Abhijit Deb. Welcome to the program.
4: Thank you.
3: Before we begin the program, let's listen to what Chief Minister Hemant Biswa Sarma said after the passing of the bill.
5: Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Assam will be the third state after Uttarakhand and Gujarat to adopt Uniform Civil Code. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitments in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt this historic bill. Now this bill will go for assent of Mahamohim Rashtrapati ji. Once we get the assent, the bill will be implemented in Assam. This process normally takes 3 to 6 months.
3: The Assam Legislative Assembly passed the Uniform Civil Code Bill yesterday, becoming the first state in the Northeast and the third in the country to adopt such a legislation after Uttarakhand and Gujarat. Could you please explain elaborately about the UCC and also in simpler terms talk about what the bill is all about and what does it aim to achieve?
6: As you told, that is the third state in India to enact UCC, Uniform Civil Code. Silent features of bill is all about banning polygamy. That is the first thing. Second thing is about living relationship. And third thing is about giving equal rights to the woman.
3: Right. And what does the bill aim to achieve? Can you elaborate a bit?
6: Look, in Assam, it's a bit tricky. There are a lot of tribals who are also there who follows the customary laws of their own tribe and all that. But they have been excluded from this bill. They are not under the purview of this bill. What this bill intends to do, aims to do, is getting equal rights to everybody other than tribal. There are a lot of tribal population in Assam, like Karbis, like Boros, who have been excluded from the bill. But UCC aims to give a uniform legislation to all, in a sense, rights of marriage, if you tell about rights of divorce and the rights of a woman in case of a divorce, what she gets and all that. So that UCC has brought in. It's nothing very different, because in other laws, Article 44 also mandates that. But UCC, in a way, aims to give a uniform level playing field to everybody other than tribals in Assam, talking about equal rights.
3: All right. What reasons has the Assam government given for introducing the UCC, and why does the Hemant Biswa Sarma government believe that such a law is necessary?
6: After BJP was in power in Assam, this is the third term, but when Hemant Biswa Sarma came into power in 2021, he was selected as a chief minister, replacing former chief minister of Assam, who was also from BJP, Sarbananda Sonowal. So he was very vocal about one thing, that Assam has a demographic change. There is a growth in population and all that. And he was very hell-bent on getting UCC in action, in the sense that if you see some communities there, there are no rules for a divorce. Then there is a polygamy which existed. That has prompted to take such legislation or bring in some legislation. In fact, BJP, before coming to power this time, they promised in their manifesto that they will get Uniform Civil Code in Assam. And it's the first state in Northeast to enact a UCC, and the third state in India after Gujarat and Uttarakhand to enact a UCC. The main aim was that, which I feel, there is no law governing a certain section of society where polygamy is rampant, child marriage is rampant. That is where I think Mr. Hemant Biswa Sarma was telling from before, that if he is voted back to power, he will get UCC in Assam, and which he has done it.
3: All right. Before we proceed, let's listen to what the Prime Minister had to say about the UCC.
7: Dharmik aadhar par bane पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी. उस समय के सदस्य के एम मुंशी जी ने समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए. सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के।

0: प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को विद्यार्थियों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल ओबैद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निमहान ने शियोक मोसिम को हराया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निशित कुमार।

0: उभराया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज साइप्रस में वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति और भूमध्य सागर में भारत के हितों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि साइप्रस के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों की साझेदारी को एक नए चरण में ले जाया गया है। जयशंकर ने साइप्रस के जिमनिच में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भी सार्थक चर्चा की। उन्होंने यूरोपीय संघ और भूमध्य सागरीय देशों के साथ भारत के संबंधों की पुष्टि की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि संस्कृति, शिक्षा, क्रिकेट और व्यापार के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध निरंतर प्रगाढ़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे निकट भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद में श्री अल्बनीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस दशक में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई समाज में योगदान और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। आज सिंगापुर में आयोजित 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता के दौरान भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे। वार्ता के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग ने मौजूदा रक्षा समझौतों की समीक्षा की। उन्होंने रक्षा सहयोग, सैन्य गतिविधियों, रक्षा उद्योग सहयोग, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री सुरक्षा, मानव रहित प्रणालियों और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे विशिष्ट और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने एक खुली, समावेशी और नियम आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना का समर्थन करने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यावहारिक और रचनात्मक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उन्होंने आज सुबह अमेरिकी सेना द्वारा देश के दक्षिणी हिस्से पर किए गए हालिया हमलों के जवाब में एक अमेरिकी हड्डे पर हमला किया है। IRGC ने कहा कि बंदर अब्बास हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में हुए अमेरिकी हमलों का स्रोत अमेरिका की वायुसेना ही थी। उसने कहा कि तेहरान की यह नवीनतम कार्रवाई अमेरिका के लिए गंभीर चेतावनी है और उसकी आक्रामकता का जवाब जरूर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: यह घटना बुधवार रात को अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए नए हमलों के बाद हुई है, जिसे अमेरिका ने अपनी सेना के लिए खतरा बताया था। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि उसकी सेना ने 4 ईरानी ड्रोन को मार गिराया। ईरान जब 5वें ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था, तब अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास स्थित ईरानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। ईरान की मीडिया ने शहर के पूर्व में धमाकों की सूचना दी। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने कहा कि हमलों में कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। ये हमले सैन्य झड़पों की एक श्रृंखला में नवीनतम कड़ी हैं। इन हमलों ने दोनों देशों के बीच नाजुक संघर्ष विराम को तनावपूर्ण बना दिया है। वहीं 3 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी है। इस संघर्ष ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों को बुरी तरह से बाधित कर दिया है और वैश्विक ऊर्जा कीमतों को बढ़ा दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: कुवैत सेना के जनरल स्टाफ के अनुसार कुवैत की वायुसेना शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है। सेना ने बताया कि देश पर हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों में हवाई रक्षा प्रणाली द्वारा आसमान में ही ध्वस्त करने के कारण वहां के निवासियों को धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अधिकारियों ने लोगों से प्रासंगिक एजेंसियों द्वारा जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक सलाहकार पर देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जर्मन अखबार को गुप्त जानकारी लीक करने के आरोप में आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। ये जानकारी इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने दी। इससे इस वर्ष के अंत में होने वाले चुनावों से पहले नेतन्याहू के लिए एक और विवाद खड़ा हो गया है। नेतन्याहू पर पहले से ही भ्रष्टाचार के 3 मामलों में मुकदमा चल रहा है। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शन लोकयान 26 अभियान के अंतर्गत अटलांटिक महासागर पार करने के बाद कल